मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून 2026। प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दोपहर केंद्र है। जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के

0: 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना भी आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगला भक्ति गीत आइए आपको सुनवाते हैं, आवाज अनुराधा पौडवाल की।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना भक्ति गीतों पर आधारित। इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम भी भक्ति गीत है, आइए आप सुनते हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आपने सुना। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज आने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। श्री रामचरित मानस गान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में। ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती में आज, समय रहेगा 6:50। वो नगमे जो कभी नहीं होते पुराने, कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। और आपका अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम जो कि ज्ञान और मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम है, नमस्कार उदयपुर, यह कार्यक्रम होगा 8:30 पर। इस कार्यक्रम में आज बात होगी फिट लाइफ मंडे के बारे में, मुख्य स्थानीय खबरें दी जाएगी, T20 वर्ल्ड कप अपडेट, फीफा वर्ल्ड कप अपडेट दी जाएगी, साथ ही हेल्दी हैबिट्स में पर्याप्त नींद के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, शहर की हलचल के बारे में, कोवर्किंग स्पेस और उद्यमिता के बारे में जानकारी होंगी और साथ ही श्रोता संवाद का कार्यक्रम भी होगा। श्रोता संवाद कार्यक्रम में जिसमें कार्यक्रम आधारित संदेश हमें आते हैं और उमंग, ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 से। यादों के जरोखों से फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम होगा सुबह 10 बजे से।

सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:05 से। ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत दिन में 2:30 से। युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे से। छह बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर शाम 7 बजे से। शास्त्रीय संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से। फिल्मी तरानों का आनंद आप लेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में। समय रहेगा रात्रि 10 बजे।

तभी आप सुन रहे थे आज आने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस खान।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी, गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

श्री रामचरित मानस गान अभी आपने सुना मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का दानी कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज हुआ बड़ा हंगले किसान भाई बहना ने नंदू भाई रो राम राम सा। देखो किसान भाई बहनों, जून रो महीनो चल रो है और अणी महीना में देखो अणी टाइम पे आपने कच्चा कच्चा कार्य करना है। अंडे बारे में बात करा और सबू पहली फसला रे उत्पादन री बात करा तो देखो सिंचित मूंगफली री बुआई रो उपयुक्त समय चाली रो है सा और मिट्टी जांच रे आधार पर अंतिम जुताई पहली प्रति हेक्टेयर 250 किलोग्राम जिप्सम मिलानो है सा। फास्फेट तत्व री पूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट द्वारा आप ही कर सका सा। खरीफ फसला में खास तौर पर दलहनी फसला में कातरे रो प्रकोप वेवेसा कीटरी लटरी वाली अवस्था ही फसला ने नुकसान पहुंचावे अणि कीटू पतंगा ने नष्ट करवारे वाते प्रकाश पास रो उपयोग अभी कर सका। अंडे वाते मानसून री वर्षा शुरू वेवो पहली खेतारी मेड़ा और चरागाह पर गैस री लालटेन या बल्ब जलाई सका सा और अंडे नीचे 5% मिट्टी रो तेल पानी में घोल बनाई कणी बर्तन में आप ही रख दा सा। प्रकाश पर कातरा रे पतंगा आकर्षित वेगा और नीचे मिट्टी रे तेल में मिलिन पानी में गिरिन मर जाएगा सा। कातरा री छोटी अवस्था री लटा फसल में दिखाई देता ही क्यूनोलोफोस 1.5% या मेलाथियन 5% चून 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर री दरु फसल रे भुरकाव करनो चावेसा। ज्वार में तना मक्खी कीट नियंत्रण रे वाते मानसून री पहली वर्का वेवो एक सप्ताह रे महीने महीने बुआई करनी है। देरु बोई जावे वाली फसला में फोरेट 10 जी कण या कार्बोफ्यूरोन 3 जी कण 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर री दरु उमरा में डालिन बुआई कर सका सा। अब किसान भाई बहनों आपी बागवानी री बात करा तो नींबू वर्गीय फलदार पौधा में फल गिरवारी समस्या री रोकथाम रे वाते प्लेनोफिक्स हार्मोन रो 3 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में घोल वणाई छिड़काव करनो चावे। बेर में काट छाट करनी है जण्यू कहिए कि नवा प्रवोह में अधिक संख्या में फल और फूल आई सकेगा। काटिया थका स्थान पर फफूंद नाशी बोर्डेक्स मिश्रण रो लेप भी अपी कर सका। नींबू वर्गीय पौधा में पर्ण खनक और सिट्रिला कीड़ारी रोकथाम रे वाते एसोफेट 75 AP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या डाइमिथियोड 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी री दर में घोल बनाई छिड़काव करनो चावे। आंवला में बोरेक्स रो 0.4% और जिंक सल्फेट रो 0.2% रो घोल बनाई छिड़काव करना चावा। अंगूर में गुच्छा में एक साथ पकाव रे वाते इथरेल रो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाई छिड़काव एनी टाइम पे आप ही कर सका सा। अभी देखो आप सब्जियां री बात करा तो भिंडी री खरीफ फसल री बुआई अणी माह में आप कर सका। भिंडी री अर्का अभय परभनी क्रांति पूसा मखमली पूसा सावनी अर्का अनामिका किस्मारो आप

10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर दरों अपनी बुआई वाते उपयोग में ले सका सा। कुष्मांड कुलरी सब्जियां में कद्दू बीटल और हाडा बीटल री रोकथाम रे वाते डाई मिथियोड 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टर दरों छिड़काव आपी अनि रेम्पे कर सका सा। फूल गोभी री अगेती किस्म अली कुंवारी रो 650 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर दरों नर्सरी में आपी तैयार कर सका। बीज री बुआई उठी थकी क्यारिया में करनी है और थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम री दरों बीज ने उपचारित करनो चावे। टमाटर री वर्षाकालीन फसल री तैयार पौधरो खेत में 75-75 सेंटीमीटर री दूरी पर रोपण करनो पड़ेगा। संकर किस्मा में गोबर री खाद 300-350 क्विंटल, नत्रजन 90 किलोग्राम, फास्फोरस 120 किलोग्राम और पोटाश 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर री दरों देनो है सा। रींगणा री वर्षाकालीन फसल री तैयार पौधरो रोपण 60 सेंटीमीटर री दूरी पर करनो चावे। खेत री तैयारी रे टेम पे गोबर री खाद 120-150 किलोग्राम, नत्रजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर दरों देनो हिस्सा। मर्चारी तैयार की दी थी पौधरो 45-45 सेंटीमीटर दूरी पर रोपण करना चाहवा। अंतिम जुताइयों पहली गोबर की खाद 150-200 क्विंटल, नत्रजन 35 किलो, फास्फोरस 48 किलो, पोटाश 50 किलो प्रति हेक्टर दरों देवा सा। कुकर बीट्स बैंगन व टमाटर वे माइट्स री रोकथाम रे वाते मिथाइल डिमेटोन 25 EC या इथियोन 1 लीटर प्रति हेक्टर दरों छिड़काव करनो पड़ेगा। कुष्मांड कुलरी सब्जियां में फल मक्खी री रोकथाम रे वाते मेलाथियन 25 EC या डाई मिथियोड 30 EC 1 मिलीलीटर दवारों प्रति लीटर पानी में प्रति हेक्टर दरों छिड़काव करनो पड़ेगा सा। अणियो हरो तेला या मोइलर और नियंत्रण भी आपो आप भेज जाएगा। फूल गोभी री अणिमा में पूसा कार्तिकी पूसा दीपाली किस्मरी बुआई अपी कर सका। अंडे वाते 600-750 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर दरों अपने इस्तेमाल करनो पड़ेगा। बीजा ने कार्बेंडेजियम 1 ग्राम या कैप्टन 50% WP 2 ग्राम प्रति किलो बीज ने हिसाबों आपी उपचारित करी नर्सरी में बुआई कर सका सा। अब आपी फूलारे उत्पादन री बात करा तो देखो वर्षाकालीन मौसमी फूल जैसे कि गेंदा, बालसम, जीनिया, सूरजमुखी, कॉक्सकॉम आदि री नर्सरी तैयार करनी है और अणी नर्सरी में झारे में नियमित सिंचाई अपने करतो रहनो है और खरपतवार भी नियमित रूप निकालती रहनी है। क्यारिया में लागी थकी गुलदाउदी में सकर्स ने अपने अलग कर लेनो है। गेंदारी वर्षाकालीन फसल री पौध रो खेत में रोपण करनो है। कतारा रे बीच में 60-90 सेंटीमीटर, पौधा रे बीच 45-60 सेंटीमीटर री दूरी राखनी है। रजनीगंधारी फसल में प्रति स्पाइक फूलों री संख्या और स्पाइक री लंबाई बढ़ावा रे वाते GA3 जिन्हें आपी जिब्रेलिक एसिड केवा सा 50 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाई पर्णीय छिड़काव करनो पड़ेगा सा। मुर्गी पालन री बात करा तो मुर्गिया में गर्मियों ने बचावर वाते दीवार पर घास रिटार्ड बांधिन पानी रा उपरे छीटा मार सका जणू कहिए के ठंडक बनी थकी रहेगा। दोपहर टेम में पानी में ग्लूकोज विटामिन और लू वंचवारे वाते इलेक्ट्रोलाइट आपी डाल सका। अबे किसान भाई बहनों आपी चारा री बात करा तो चारा रे वाते ज्वार, लोबिया और बहु कटाई वाली चरी री बुआई अपने एनी टाइम पे कर सका। वर्का ने व्यवहारी दशा में पलेवार देन बुआई भी आपी कर सका। लोबिया रे वाते 35-40 किलोग्राम, ज्वार रे वाते 40-45 ग्राम और बहु कटान वाली चरी रे वाते 20-25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर दरों अपने जरूरत पड़ेगा। चारा री गुणवत्ता और उपज बढ़ावा रे वाते ज्वार में बीज रे लारे 10-12 किलो लोबिया रो बीज भी प्रति हेक्टर आपी मिलाइन बोई सका सा। अबे देखो किसान भाई बीजा रे रख रखाव और सुरक्षित भंडारण री जटे आपी बात करा तो कृषि उत्पादन में वृद्धि रे वाते विभिन्न कारक में बीज रो एक विशेष महत्व वेवे। यदि बीज खराब वेवे तो शेष अन्य साधन जैसे की उर्वरक है, सिंचाई आदि पर भी आपने किदो जको जो भी खर्च है वो व्यर्थ वे जावे। केवारो मतलब यो है की कृषि संबंधी सभी साधन जैसे की बीज है, उर्वरक है, कीटनाशी है, पानी, विद्युत उपकरण, तकनीकी जानकारी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वे और एक दूसरा रे पूरक भी वे। परंतु अणा में कहीं भी ध्यान अपनी बात करा तो बीजों रा स्थान जो है सबो सर्वोपरि मान्यो जावे। खलियान स्तर पर बात करा तो देखो बीजारी मड़ाई गढ़ाई अणी प्रकार किए जाने चावे कि एक प्रजाति रा बीज रो दूसरी प्रजाति रे बीज में मिलनो नहीं चावे। बीज ने पुराना बोरा में भरवो पहली बोरा ने पलटिन अपने झाड़ लेनो है। जणू कहिए कि वणा बोरा में कणी भी प्रकार अन्य फसल या प्रजाति रा दाणा नहीं रह पाए सा। पुराना बोरा ने मेलेथान रो प्रयोग करीन कीट मुक्त करनो भी बड़ो महत्वपूर्ण है सा। बोरा में भरवो पहली बीज ने वांछित निर्धारित सीमा तक अपने सुखावनो भी पड़ेगा। अभी देखो आपी गोदाम रे स्तर री बात करा तो जणा गोदाम में बीज भंडारित करनो है वणा में बीज रे अतिरिक्त और कोई दूसरी विशेष रूप रासायनिक खाद रो भंडारण नहीं करना चाहवा। गोदाम वायुरोधी वेणो चावे, गोदाम री फर्श जमीन ऊंची वेणी चावे, हवादार और सीलन मुक्त वेणी चावे सा।
नमी री मात्रा री बात करा तो 8-9% वेणी चावे।

40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर काला पॉलिथीन रे ऊपर बीजा रो 8 से 10 घंटा सुखावा और कीटारो प्रकोप जो है वो नष्ट हुई जावे सा। पंडे बाद बीजा ने अपने 700 गेज पॉलिथीन में सील करीन रख देना चाहवा अणियों कही भंडारण में कीटारो प्रकोप नहीं वेगा और अंकुरण क्षमता भी प्रभावित नहीं वेगा सा। भंडार घर में विंडो ट्रेप या ग्रेन प्रोब रो इस्तेमाल करीन आपी कीटा ने आगमन ने भी पतो लगाइन वंडो सही उपचार भी कर सका सा। या तो देखो किसान भाई बहनों एनी टाइम पे अपने जून महीनो चाल रो है ना, एनी टाइम पे अपने कशा कृषि संबंधी कार्य करना है अंडे बारे में आपी बात की दी सा। अबे घड़ी आड़ी देखा तो माने चालवा रो टाइम भी रो है तो नंदू भाई ने आज्ञा दो सा। जय जवान जय किसान।

किसान भाइयों ने सुना भी उनका दानी कार्यक्रम खेती में आज मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं वो तराने जो कभी नहीं होते पुराने, कार्यक्रम सदबहार नगमे। आइए अब शुरू करते हैं। इस कार्यक्रम में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं झुक गया आसमां, इस फिल्म का ये गीत आवाज मोहम्मद रफी की। संगीत शंकर जयकिशन का।

0: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको अगला गीत, मेरा साया, इस फिल्म से।
1: झुमका गिरा रे, हाय

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम।
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
0: और ये

0: मेरी गुड़िया के नाम।
1: पर दादी
0: हाँ?
1: आपके नाम
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो
1: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
7: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
6: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: केवेसा के राजस्थानी लोकगीत सिर्फ गीत नहीं आने जीवन रो आईनो है अन गीता में प्रेम है अपनायत है अने पीरी दर पीरी चली आवती संस्कृति रो खजानो है। तो एक छोटी सी बात बताओ सा कि माटी री खुशबू बोला री मिठास राजस्थानी लोकगीता में बसे राजस्थान रो विश्वास।

राजस्थानी लोक संगीत रे रंगील महफिल में अबे भारी एक चुलबुला अंडे मस्ती भरा गीत पान खिला दे रे। ये गीत हंसी मजाक प्यार अंडे अपनाया त्रि मीठी नो जोक सु भरपूर है। गीता रे बोल सुनता ही मन में खुशी रे लहर दौड़ जावे सा अंडे माहौल एकदम रंगीन वही जावे सा। राजस्थान रे लोक धुनार साथ ये गीत ने और भी खास बनावे देवे सा। तो साथियों छोड़ो मुस्कराओ अंडे तैयार वही जाहो इन शानदार गीत रो आनंद लेवर खातिर।

समय आई गयो है तो तैयार वही जाओ सा, क्योंकि अबे आने वालो है एकदम धमाकेदार राजस्थानी गीत मैं तो नाचू। ये गीत खुशियां उत्साह ने मस्ती से भरपूर है। जद ये गीत रसूर बजे तो पाँव अपने आप थिरकन लग जावे सा। चाहे शादी ब्याह हो, तीज त्योहार हो या कोई पारिवारिक समारोह, ये गीत हर मौका ने यादगार बनावे सा। तो साथियों मुस्कुराइए, मन ने झूमन दीजिए, तैयार वही जाओ इन शानदार गीत रो आनंद लेवा खातिर।

अब आ रही एक ऐसा गीत आ रही एक गीत री जी को नाम सुनते ही घूमर रंगत ने बिन री री ऐदा या तह जावे सा बनी घूमर खाले सा। एक गणो ही प्यारो गीत है जेमा बनी री शोभा राजस्थानी रीति रिवाज अंडे लोक संस्कृति री सुंदर झलक देखन ना मिले सा। गीत रा सुर सुनता ही मन झूम उठे अंडे लागे जो रंग बिरंगी ओढ़नी लहरावे पायल छनकावे अंडे आंगन में घूमर रे महफिल सज गई है। तो साथियों तैयार हो जावो राजस्थान री माटी री खुशबू अंडे लोक संगीत री मिठास में रंगवा खाते।

राजस्थानी गीतारी आज री रंग बिरंगी महफिल अपे अपनी मंजिल पर पहुंच रही है। उम्मीद करा कि आज पेश करेला गीता ने थारो मन ने जरूर छुए होंगे अने राजस्थान री माटी री सोंदी महक रो आनंद थाने मिल्यो होसी। लोकगीता में बस्यो प्रेम अपनाए तने संस्कृति रो एक खजानो आप त पोजावानो अवसर मिलो ई मारे वास्ते घणी खुशी री बात है। अब दीजो माने इजाजत, फिर मुलाकात होसी एक नवा कार्यक्रम नवा विषय अने नवा गीत रे साथ।

शुरा भी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीता का कार्यक्रम गोखड़ा, ये आकाशवाणी उदयपुर है। कहते हैं कि संगीत वह मधुर भाषा है जो भावनाओं को शब्दों से भी अधिक सुंदरता से व्यक्त करती है। जब बात सुगम संगीत की हो तो स्वर, शब्द और भावनाओं का अद्भुत संगम मन को एक अलग ही आनंद से भर देता है। आज के कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा मधुर गीत, जिनकी धुनें आपके मन को सुकून देगी और दिन को और भी खुशनुमा बना

आइए कुछ पल रोजमर्रा की भागदौड़ से अलग होकर संगीत के इस सुरीले सफर का आनंद लेते हैं।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
5: चले
6: ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है,
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
8: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
10: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
11: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।

श्रोताओ, सुगम संगीत कार्यक्रम बस संहिता के आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। कहते हैं कि संगीत की दुनिया में कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को पार कर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखते हैं। ऐसी ही अमर और मधुर गीतों को हम कहते हैं सदाबहार नगमे। इन गीतों की मिठास कभी कम नहीं होती, चाहे मौसम कोई भी हो, दौर कोई भी हो, ये नगमे हर बार सुनने पर नई ताजगी, नई अनुभूति का एहसास कराते हैं। इनके बोल, धुन और भावनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रिय हैं जितनी अपने समय में थी। तो आइए यादों के सुनहरे सफर पर चलते हैं और सुनते हैं कुछ ऐसे सदाबहार नगमे जिन्होंने वर्षों से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया है।

श्रोता कहते हैं कि प्रेम एक एहसास है जो जीवन में रंगों से भर देता है। जीवन को कभी यह खुशी देता है तो कभी वीरा की टीस भी देता है। इस गीत में प्रेम की उलझने, भावनाओं और मन की गहराइयों को बेहद खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। इसके भावपूर्ण बोल और मधुर संगीत श्रोताओं के दिल को छू लेते हैं तो और उन्हें गीत के साथ भावनाओं की एक अनूठी यात्रा पर ले जाते हैं। तो आइए प्रेम की नींव मधुर अनुभूतियों के साथ सुनते हैं क्या खूबसूरत गीत।

कहते हैं कि प्रेम जब दिल में बस जाता है तो हर धड़कन में अपने प्रिय का एहसास होने लगता है। यह गीत प्रेम के उस खूबसूरत एहसास को व्यक्त करता है जहां मन अपने प्रिय के साथ हर खुशी हर सपने को साझा करना चाहता है। मधुर संगीत और भावपूर्ण बोल इस गीत को और भी खास बना देते हैं। कहते हैं कि प्रीत वो दीप है जो बुझाया नहीं जाता, दिल से निकला रिश्ता भुलाया नहीं जाता, सच्चे प्रेम की खुशबू रहती है उम्र भर, ये वो फूल है जो मुरझाया नहीं जाता।

0: बहू
1: जी मम्मी जी,
0: इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
2: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
0: जैसे UPI से।
2: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
6: आगे सैलरी? नहीं झुमके
7: ना, पहले बचत,
6: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
9: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

शोधा कहते हैं कि प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है जो हर दिल के पास होता है। नजरें चाहे कुछ भी कहें पर सच्चा प्यार दिल के बहुत खास होता है। कहते हैं कि तेरी मुस्कान में मेरी खुशी बसती है, तेरी बातों में मेरी दुनिया हंसती है। क्या लिखूं तेरे प्यार की तारीफ में, मेरी हर धड़कन तुझी से सजती है।

किसी ने सच्ची कहा है कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। कहते हैं कि जिंदगी में कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, जिंदगी में कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, जो है पास उसको संभाल कर रखना, क्योंकि कहते हैं कि प्यार खोकर दोबारा नहीं मिलता। कहते हैं कि जब प्रकृति अपने सुर छेड़ती है तो मन अपने आप ही संगीत की लहरों में बहने लगता है। कोयल की मीठी कूक भी कुछ ऐसा ही जादू बिखेरती है। इसी मधुर एहसास को खूबसूरती से सजाया है इस गीत में। तो आइए कोयल की मीठी तान और संगीत की मधुर लहरियों के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

कहते हैं कि कभी कभी किसी अपने के साथ ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। दिल की यही खूबसूरत भावना बड़े ही मधुर अंदाज में झलकती है इस गीत में। इस गीत में प्रेम, उम्मीद और अपने प्रिय के साथ बिताए जाने वाले सुनहरे पलों की कल्पना को बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है। इस गीत के भावपूर्ण बोल और मधुर संगीत सीधे दिल को छू जाते हैं, तो आइए प्यार और अपनापन से भरे सुरीले नगमे का आनंद लेते हैं।

0: श्रोता कहते हैं कि प्यार की शुरुआत अक्सर आंखों की खामोश भाषा से ही होती है। जब दो नजरें मिलती हैं तो बिना कुछ कहे बेदिल की कई बातें हो जाती हैं। ऐसी ही मीठी भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त किया है इस गीत में। इस गीत में प्रेम का कोमल एहसास, दिल की धड़कनों की मिठास और अपने प्रिय के प्रति समर्पण की भावना झलकती है। कहते हैं कि नैनों की भाषा बड़ी निराली होती है, बिन बोले हर बात बता देती है, जो दिल में छुपी हो परसों से नजरें पल भर में जता दे। तेरे नैनों में ऐसा जादू है, हर ख्वाब जैसे बेकाबू है, एक नजर तो तुम मुस्कुरा दो, दिल कहे बस यही आरजू है।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोता कहते हैं कि पहली नज़र का प्यार एक एहसास जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। किसी की एक मुस्कान, एक नज़र या एक मुलाकात दिल की धड़कनों को नया अंदाज दे जाती है। अब पेश है ऐसा ही रोमांटिक गीत जिसमें पहली मुलाकात की मासूमियत, दिल की हलचल और प्यार की मीठी शुरुआत को बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है। तो अपनी यादों को ताज़ा कीजिए और इस प्यारे से नगमे का आनंद लीजिए।

सुर और गीतों से सजी आज की महफिल अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है। उम्मीद है कि आज के फिल्मी गीतों ने आपके मन को छुआ होगा और आपकी यादों को ताज़ा किया होगा और आपके दिन संगीत की मधुरता गूंज दी होगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और संगीत के इस खूबसूरत सफर का आनंद लेते रहिए।

शुदा फिल्म संगीत कार्यक्रम बस यहीं तक की आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। जोधपुर शहर के सरकारी पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने वाली 8 प्रसूताओं में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने जयपुर में पत्रकारों को बताया कि इनमें से 6 प्रसूताओं की स्थिति सामान्य है, वहीं एक को एम्स में भर्ती कराया गया है।
1: पावटा के अंदर 6 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनका यूरिन वगैरह ऑल पैरामीटर्स आर ओके। एक जो एम्स में रेफर कर रहे हैं वो हाईली डायबिटिक है और एक प्रसूता जो एमडीएम में है उसके पीलिया हुआ है, उसको भी जो है हम परमिशन ले रहे हैं कि हम चांस क्यों ले, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज जो है वो एक अलग लेवल की फैसिलिटीज होती है।
0: ये मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने संबंधित ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया है। संक्रमण के कारणों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किए गए उपकरणों, दवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूरी तरह शांत रखने का साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन को शांत करना और श्वास प्रवाह को नियमित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल में 2% से

0: अधिक की गिरावट के साथ लगभग 89 डॉलर पर आ गई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जैसलमेर से गिरफ्तार मुश्ताक अली को आज जयपुर की एक अदालत ने 3 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने कॉल डिटेल और बैंक खातों की विस्तृत जांच के लिए अदालत से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पुलिस के अनुसार मुश्ताक पिछले 2 साल से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों के साथ साझा करता था। प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष यातायात अभियान के तहत 1,37,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 4 से 20 जून तक चले इस अभियान में सबसे ज्यादा शिकंजा अवैध काली फिल्म वाले वाहनों पर कसा गया। इसके तहत 51,000 से अधिक वाहनों में काली फिल्म हटवाई गई। साथ ही नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अनाधिकृत चिन्ह, लाल बत्ती, नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई। यातायात महानिदेशक अनिल पालीवाल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। जिलेवार कार्रवाई में जयपुर पश्चिम सबसे अव्वल रहा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आमजन को पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार के विशेष अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चलाए गए 9 अभियानों के तहत 24,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। 5 अप्रैल से 20 जून तक चले इन अभियानों में 5,000 से अधिक खराब हैंडपंपों की मरम्मत, पाइप लीकेज दुरुस्त करने और बाधित जलापूर्ति बहाल करने सहित लाखों लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई है। पिछले सप्ताह इस अभियान के दौरान एक दिन में 2,385 पेयजल समस्याओं का निस्तारण किया गया। प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के झांकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 26 मिलीमीटर बारिश झुंझुनू और सीकर के रामगढ़ में दर्ज की गई। वहीं सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान जोधपुर में 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा अलवर, पिलानी और सीकर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर को। इस समय दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। अब से कुछ ही पलों में महिलाएं सुनेंगी अपना चहेता कार्यक्रम महिला जगत।

0: ए आपकी बता नहीं सकते, रिश्ता क्या है आपसे समझा नहीं सकते। आप हमारे लिए इतनी ख़ास हो कि अगर आप हो उदास तो हम मुस्कुरा नहीं सकते। जी हाँ सखियों, क्या हम आपको क्या बताएं कि आप हमारे लिए कितनी ख़ास हैं। तो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम दौड़े चले आते हैं आपसे मिलने और रूबरू होने के लिए कि हम कब सखियों से मिलें, हम कब से बहुत ढेर सारी बातें करें सखियों से। तो स्वीकार कीजिए, मैं अफरोज फारूकी और मेरे साथ हैं
1: रजनी शर्मा का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: न कोई दूरी न कोई दीवार, रेडियो जोड़ता है हर दिल से हर बार। स्वरों की इस मधुर डोर के साथ स्वागत है आपका इस खूबसूरत कार्यक्रम में।
0: वाह, बहुत ही मज़ेदार बात कही कि कोई दूरी तो है नहीं, बस हम आंखें बंद करें और मुलाकात हो जाती है। बस ये सोचिए कि आप हम आसपास बैठे हैं और बातें कर रहे हैं।
1: हाँ, और थोड़ा मौसम का भी आनंद लेंगे।
0: बिल्कुल, मौसम का आनंद लेंगे, लेकिन अभी आनंद का जो टाइम है वो अभी शुरू हुआ नहीं है, अभी तो थोड़ा मौसम सता रहा है।

0: देखो अफरोज, मौसम सता जरूर रहा है, लेकिन इस मौसम में जितने भी हमारे श्रोतागण हमें सुन रहे हैं तो उन्हें तो क्यों ना थोड़ा सा ठंडक दे दी जाए कि कार्यक्रम के तहत ही उनको लगे कि हाँ, हम गर्मी में भी ठंडक का एहसास ले रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो चले उनको कराते हैं शिमला की सैर।
0: बिल्कुल।

0: तो शिमला हमने घुमा दिया और मौसम का एहसास भी हो गया कि ऐसा लग रहा है कि आसपास बहुत बर्फ सी जम रही है और जून का महीना हमें ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है ना।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो सखियों को आप थोड़ी सी जानकारी भी दें, हम शिमला से अपने राजस्थान में आते हैं और बात करते हैं न्याय साथी पोर्टल की। यह पोर्टल भारतीय न्याय व्यवस्था के उस सपने को साकार करता है जहाँ न्याय केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो जाता है। और समाज और न्याय प्रणाली का जो ढांचा है, ये जो उससे हमें कानूनी ढांचे से आत्मविश्वास जागता है आम जनता में, और इसमें पारदर्शिता और गली जो वकीलों की गतिविधियां हैं वो बहुत आसान हो जाती।

0: करती हैं, जिससे कि अदालती फैसलों की ट्रैकिंग और शोधकर्ता आसान हो जाता है, जिससे मुकदमे की जो तैयारी है वो बहुत तेज़ होती है और इससे अदालतों में लंबित मामलों में निपटारे में गति आसानी से हो जाती है। तो उसके बाद फिर होता क्या है कि ये भाषाई बाधा का भी खात्मा हो जाता है इस पोर्टल के ज़रिए। कानून का अंग्रेज़ी में होना अक्सर ग्रामीण आबादी के लिए बड़ी रुकावट बनता है। न्याय साथी पोर्टल द्वारा प्रामाणिक हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सेवाएं देने से यह रुकावट दूर हो जाती है। न्याय साथी पोर्टल केवल एक बेहतर वेबसाइट ही नहीं है, बल्कि एक डिजिटल टूल भी है, जिसे एक यह डिजिटल इंडिया और सबका न्याय के संकल्प को जोड़ने वाला एक मजबूत पुल है। तकनीक के माध्यम से न्याय व्यवस्था को पारदर्शी, सुलभ और किफ़ायती बनाकर इस पोर्टल ने देश की हर नागरिक को एक कानूनी साथी दिया है। भविष्य में इस प्रकार के प्रयासों से भारतीय न्यायिक प्रणाली और अधिक सुदृढ़ और जन केंद्रित हो जाएगी।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अफरोज आपने बताई, और इसी के साथ मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि न्याय सेतु पोर्टल की जो मुख्य सुविधाएं हैं वो कुछ ऐसी हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, अपने अधिकारों और कानूनों की सरल भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पीड़ित मुआवजा संबंधी आप जानकारी ले सकते हैं, और इसी के साथ शिकायत दर्ज करने की सुविधा जैसे साइबर अपराध, बाल विवाह, बाल श्रम आदि जैसा राज्य के अनुसार है आप उसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और यदि किसी को इसकी वेबसाइट पर जाना हो तो न्यायसाथी.info इसकी वेबसाइट है, और राष्ट्रीय कानूनी सहायता से भी आप हेल्पलाइन है जिसके नंबर है 14454 टेली लॉ हेल्पलाइन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।
0: और AI का उपयोग करके इस पोर्टल से जीरो इंसुलेशन यानी बिना किसी गलत जानकारी के सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। यह वास्तविक अदालती फैसलों और भारतीय कानून के आधार पर सटीक जानकारी देता है, यानी कि कोई भी जानकारी में कोई गलत फहमी नहीं होती और जो भी मामला होता है वो सटीक आपके सामने आ जाता है। और नागरिक कानूनी सहायक भी होता है ये, जैसे कि कोई भी आम आदमी अपनी भाषा में बोलकर, कोई भी चाहे राजस्थानी भाषा हो चाहे पंजाबी भाषा हो, बोलकर या लिखकर अपनी समस्या को बता सकता है और उसका तुरंत मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि किसी ने ठगे जाने का की शिकायत की, जैसे मकान मालिक या किराएदार के आपस में विवाद हो गया, या फिर रेडीमेड कानूनी दस्तावेज होते हैं वो भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं और तुरंत प्राप्त करे जा सकते हैं, जैसे कानूनी नोटिस है, अनुबंध और वैवाहिक दस्तावेज। कई बार ये सब प्रीबिल्ड प्रारूप उपलब्ध कराता है, यानी कि बिना किसी देरी के हमें सूचनाएं, जानकारी और सहायता प्राप्त हो जाती है इस न्याय साथी पोर्टल के माध्यम से। और न्याय बहुत आसान हो गया है हर एक के लिए इसके जरिए। आप तो
1: बिल्कुल, हम घर बैठे भी न्याय ले सकते हैं, उसके बारे में परामर्श कर सकते हैं।
0: तो ये तो रही न्याय साथी पोर्टल की बात है, और अब सुने फिर एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो बहुत ही सुंदर सा हमने सखियों को गीत सुनाया, और अब बात करते हैं कला और संस्कृति संरक्षण में महिलाओं की क्या भूमिका है। भारतीय कला और संस्कृति विश्व भर में जानी जाती है। अपनी विविधता और विशिषता से भरी संस्कृति की अमूल्य धरोहर को सहेजने और संजो कर रखने की में और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में महिलाओं का खास योगदान होता है। और महिलाएं न केवल संस्कृति की संवाहक रही हैं, बल्कि उन्होंने कला के विभिन्न रूपों को नया जीवन भी दिया है। हम देखते हैं ना कि कई कलाएं ऐसी होती हैं जो महिलाएं ही करती हैं, जैसे कि नृत्य की देख लो, गवई नृत्य है, घरेलू कलाएं हैं, मांडना है, ये ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। पारंपरिक चित्रकला शैली सदियों से महिलाओं द्वारा घर आंगन से शुरू होकर दीवारों तक लाई जाती है।
1: अफरोज, इसी में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी कि एक माँ अपनी लूरी से बच्चे को संस्कृति से जोड़ती है, एक बेटी परंपराओं को सीखती है, एक बहन त्योहारों की मर्यादा को निभाती है, और एक गृहिणी पूरे परिवार में कला व संस्कृति के संस्कारों की ज्योति जलाए रखती है। यदि संस्कृति एक वृक्ष है तो महिला उसकी जड़ है। जड़ जितनी मजबूत होगी, संस्कृति उतनी ही फलती फूलती रहेगी। जैसा अभी तुमने बोला कि नृत्य से, तो हमें लोक नृत्य हो गया, संगीत हो गया, जैसे जैसे काल बेलिया जो है, हम उसे किस लिए जानते हैं? क्योंकि वो लेडीज़ करती आ रही है, वो महिलाएं करती आ रही है, और उन्हें इतना प्रसिद्ध कर दिया है। काल बेलिया हो गया या फिर घूमर जैसी पारंपरिक कलाओं को महिलाओं ने ही सहेज कर रख रखा है।
0: बिल्कुल, और बहुत से गीत तो हमारे दिल को आज भी अच्छे लगते हैं। जब भी हम उसको सुनते हैं तो एक अपने अंदर बहुत ही भावनात्मक हमारा जो जुड़ाव होता है वो हो जाता है। जैसे कि एक हम सुनते हैं पधारो म्हारे देश, उसको सुन के ऐसा लगता है कि भारत में या ख़ास तौर से राजस्थान में मेहमानों को कितना ज़्यादा आदर दिया जाता है ना। कहते हैं ना कि मेहमान भगवान के समान माना जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक दूसरे से दिल जुड़ती चली जाती हैं,
1: बिल्कुल
0: और सम्मान अपने आप पैदा हो जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हस्तशिल्प और बुनाई, मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई, बुनाई भी ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। चिकनकारी है, फुलवारी है, क्रोशिया से अलग अलग चीज़ें बनाना, बैग बनाना, पर्स बनाना, और टोकरियाँ बनाना, जैसे बांस की टोकरी हो गई, ये सब ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं। और इन चीज़ों को छोटे छोटे से काम करके वे आत्मनिर्भर भी हो रही
1: और
0: हैं।
1: सबसे अच्छी बात अफरोज की है ना, इसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, है ना। बहुत सारे हम ऐसी महिलाओं को जानते हैं कि जो स्कूल में गई नहीं है, उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू करी है, थोड़े बहुत अक्षर ज्ञान लिए हैं, लेकिन वो अपनी कला से प्रसिद्धि पाई है उन्होंने।
0: बिल्कुल
1: और वो कहते हैं ना कि महिलाएं केवल घर की रसोई के लिए नहीं है, है ना, त्योहारों, लोक कथाओं और अनुष्ठानों के माध्यम से संस्कृति को जीवित उन्होंने रखा है। ये ज्ञान किताबों में दर्ज होने की बजाय माताओं से बेटियों और बहुओं को मौखिक रूप से मिला है।
0: बिल्कुल सही है, और इसी तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता चला आ रहा है, और ज़रूरी भी है, वरना क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं इतनी कीमती, जिनकी कोई कीमत नहीं है, वो लुप्त तो हो जाएंगी। अगर सास बहू को नहीं सिखाएगी और बेटी को नहीं सिखाएगी तो फिर
1: बिल्कुल
0: वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कोशिश भी हम यही करें कि इनको सहेजें और आगे बढ़ाने के लिए करें। और इस तरीके से आधुनिक युग में डिजिटल संरक्षण भी ले रही हैं महिलाएं, और इन अपने जो कला है उनको बहुत आगे तक ले जा रही हैं। तो कला तो आगे बढ़ रही है। अब एक कला और भी है, संगीत कला, और गीत का जो आनंद ले सकते हैं हम उसके माध्यम से, तो लेते हैं एक प्यारा सा
1: बिल्कुल
0: गीत।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
0: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ,
1: जैसे UPI से।
0: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
0: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
0: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: तो रजनी, आज हम ऐसे जीवन में जी रहे हैं जहां तकनीक हमारी सांसों की तरह हमारे जीवन में रच बस गई है, और इस तकनीकी क्रांति का सबसे आधुनिक और प्रभावशाली चेहरा है AI, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और सीधे शब्दों में कहें तो जब कंप्यूटर या मशीनें इंसानी दिमाग की तरह सोचना, समझना, सीखना और निर्णय लेना शुरू कर देती है, तो इसे ही AI कहते हैं। आज AI ने विज्ञान कथाओं की किताबों से निकलकर हमारे वास्तविक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, और हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक न चाहते हुए भी कितनी बार AI का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन और वॉइस असिस्टेंट हमारे फ़ोन में मौजूद होता है, कई ऐसे ऐप्स हैं जो कि हमारी सीधी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हमारी रुचियों को देखते हैं कि हमारी रुचि किस तरफ जा रही है, और उसी तरह से हमारे आगे आते रहते हैं वो इस चीज़ें। जैसे अगर हम किसी चीज़ की वो रेसिपी देखते हैं तो एक नहीं कई रेसिपीज़ आने लग जाती हैं, कोई हम फ़ोटो देखते हैं, कोई स्पेशल प्रोग्राम देखते हैं तो उसी से रिलेटेड, तो ये हमें ऑब्जर्व करने का काम करती है। और भी कई चीज़ों में, कई क्षेत्रों में हमारे जीवन को AI ने किया है जिससे हम प्रभावित हुए हैं। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर हम करते हैं तो कई साइटें होती हैं जो कि AI की मदद से हमारे व्यवहार को समझकर हमें बेहतरीन प्रोडक्ट का सुझाव देती हैं। और AI का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत है। जैसे कि कई टूल्स होते हैं जो छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सीखने में मदद कर रहे हैं, और अब पढ़ाई केवल किताबों तक नहीं बल्कि हर सवाल का जवाब तुरंत हम आसान भाषा में मिल जाता है।
5: बिल्कुल। और इसी के साथ महिलाओं और युवाओं के लिए भी ये अवसर है। आज अनेक महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन शिक्षण, कंटेंट निर्माण, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग, लेखन और छोटे छोटे व्यवसायों के संचालन में AI की सहायता ले रही है। युवाओं के लिए भी नए रोजगार और स्टार्टअप के अवसर खुल रहे हैं, और इसी के साथ बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी AI बहुत सहायता कर रहा है। बैंकिंग सेवाएं पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और तेज हो गई है। ऑनलाइन लेन देन की निगरानी, धोखाधड़ी की पहचान, डिजिटल भुगतान और ग्राहक सेवा में AI महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे समय की बचत होती है और सेवाओं की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है।
4: और इसी तरह से देखें कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी AI का बहुत ज़्यादा वरदान एक साबित हुआ है। इसकी मदद से बीमारियों को, जैसे कि कैंसर का शुरुआती जब चरण होते हैं तभी पता लग जाता है, और जटिल सर्जरी में भी रोबोट डॉक्टरों की मदद करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं कई हॉस्पिटल्स में। और यातायात में भी हम देखें कि बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें हैं, ये भी AI की मदद से ही चलती हैं, और ट्रैफिक का पता लग जाता है। कई बार हम रास्तों का पता लगा लेते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, यानी कि हमारे जो जीवन है उसको AI ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। लेकिन जो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जहाँ फ़ायदा है वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान भी है।
5: बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर हम फ़ायदे की ही बात करें अफरोज, तो रेडियो, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया सभी में AI आधारित तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। इससे कार्य अधिक तेज और प्रभावी बन रहा है। हालांकि मानवीय संवेदनाएं और रचनात्मक आज भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं ना कि कंप्यूटर दिमाग कितना भी हो लेकिन बनाया है तो मानव नहीं है।
4: बिल्कुल।
5: तो मानव से बढ़कर दिमाग और किसमें
4: है? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये तो नहीं हो सकता। और जो अगर जैसे बेटा है माँ के दिल सीने से लग के जो वो उसकी मोहब्बत मिलेगी, वो ममता वो AI नहीं दे सकती।
5: बिल्कुल।
4: एक पति अपनी पत्नी के साथ मोहब्बत करता है, वो दिख तो जाएगा लेकिन वो जो फीलिंग्स है वो AI नहीं दे सकती।
5: हाँ, बिल्कुल।
4: और इसी
5: लेकिन
4: तरह से
5: ऐसा होता है कि आज की जनरेशन है जो बहुत जल्दी तनाव ले लेती है अफरोज। कुछ भी हो, आप देखिए, डिप्रेशन में चली जाती है, वो अकेलापन फील करती है। तो अगर आज जो AI के थ्रू बहुत सारे जो ऐप्स बने हुए हैं, अगर उनके थ्रू वो बैठ के बातें करें

0: अपने प्रॉब्लम को उनसे भी शेयर करें तो वो एक समस्या का समाधान बताएंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, तो अगर वो चाहे तो वो अकेलेपन को एक जैसे चैट जीपीटी हो गया या कुछ ऐसा AI माध्यम हो गया, डिजिटल कोई ऐसा माध्यम हो गया कि अपनी बात को वो वहाँ पे शेयर करे तो उन्हें बहुत अच्छे से समाधान
1: मिल
0: मिलेंगे।
1: सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दो पहलू होते हैं एक
0: हाँ,
1: सिक्के सिक्के
0: फील
1: के, तो रोजगारों में संकट आ रहा है AI की
0: बिल्कुल
1: वजह से। जहाँ पहले बहुत सारे लोगों की जरूरत होती थी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपनी में या फैक्ट्री में, वहाँ AI बहुत सारे लोगों की रोजगार का संकट पैदा कर रहा है। इसी तरह से निजता का भी खतरा होता है, कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होती, हर चीज़ जो भी हम मोबाइल में सर्च कर रहे हैं जो भी वो
0: वो
1: सब
0: सुरक्षित
1: पकड़,
0: नहीं है।
1: हाँ हमारी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मतलब हम गोपनीय नहीं रख सकते। उसी तरह से मानसिक निर्भरता भी हमारे अंदर आ गई है कि हम हमेशा निर्भर हो गए हैं कि नहीं, अभी एक बटन दबाएंगे और सारी जानकारी मिल
0: इन्फॉर्मेशन आ
1: जाएगी।
0: जाएगी। और
1: बिल्कुल
0: इसके अलावा अगर कोई घर में कोई मेहमान आता है तब भी हम उसी में लगे रहते
1: लगे
0: हैं।
1: रहते
0: हालांकि
1: हैं।
0: वो हमारे लिए इसलिए भी उपयोगी है अफरोज, कि अगर कोई मेहमान आ रहा है और हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छे घर की सजावट कर ले, तो हम AI के माध्यम से वो सब अपने घर की सजावट कर सकते हैं। कुछ खान पान कुछ अच्छा सा बनाना है तो हम
1: बिल्कुल
0: उसकी हेल्प लेकर के बहुत अच्छा सा खाना बना सकते हैं।
1: हाँ
0: और भी
1: हाँ
0: बहुत सारे काम हम
1: हाँ लेकिन
0: AI के,
1: फ़ायदा ज़्यादा है अगर हम देखें तो, हमें
0: बिल्कुल
1: फ़ायदे लेने
0: हम
1: चाहिए।
0: जैसा उसका उपयोग करना चाहेंगे
1: बिल्कुल
0: अफरोज,
1: ये हमारे ऊपर
0: वैसा
1: है,
0: वो हमारे ऊपर है।
1: बिल्कुल। और तो ये तो रही AI की बात, और कई बार ये भी देखते हैं कि नकली फ़ोटो भी लगा देते हैं ना, वो भी कई बार किसी कई रिश्तों
0: हाँ
1: में दरार पैदा करने के काम हो जाते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हाँ इसको अच्छे से यूज़ करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस टाइम जो हो चल रहा है सबसे ज़्यादा AI का चलन, वो हमारे ज़िंदगी में बहुत अच्छा बदलाव ला रहा है। और इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, नहीं झुमके ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: तो रजनी, अब हमारा प्रोग्राम जो एंड होने में है, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में, कि आधुनिक युग में जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है ना, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते थे जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन पे हमारी निर्भरता का जो कम होना वो बेहद ज़रूरी हो गया है। इस संकट को दूर और सटीक और प्रभावशाली समाधान है हरित ऊर्जा, यानी कि जो सूरज, हवा, पानी से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, उसको कहते हैं ग्रीन एनर्जी, है ना। तो उसके लिए, उससे फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। दूसरा कि असीमित व कभी न ख़त्म होने वाले स्रोत हैं ये सब, और आर्थिक बचत और कम रखरखाव में ये आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं, और रोज़गार के भी कई नए अवसर हमें मिलते हैं।
6: बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी केवल आज की आवश्यकता नहीं है अफरोज, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। जितना अधिक हम स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। जैसे ग्रामीण भारत के लिए ग्रीन एनर्जी किसी वरदान से कम नहीं है। जहाँ बिजली की लाइनें पहुँचाना कठिन है, वहाँ सोलर ऊर्जा के माध्यम से घरों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य सेवाओं और सिंचाई सुविधाओं को बिजली मिल रही है। इससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
5: तो ये तो रही सौर ऊर्जा की बात, और बातें तो अभी भी बहुत कुछ हैं, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो हमें लेना होगा इजाजत।
6: नमस्कार, नमस्कार।

अभी भाई ने सुन रही थी अपना चहेता कार्यक्रम महिला जगत, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। एक बार फिर से ले चलते हैं आपको गीत और संगीत की दुनिया में, हमारे फिल्म संगीत कार्यक्रम में।

दोस्तों जीवन में संगीत की तरह है, इसमें सब कभी ऊंचे सुर जाते हैं तो कभी धीमे, लेकिन है सुर का अपना महत्व होता है। बस जरूरत है जीवन की धुन को प्रेम और विश्वास के साथ सुनने की। सुबह की किरण कहती है कि मुस्कुरा के चल, हर राह आसान होगी कदम बढ़ा के चल। तो अब समय है आज की अगली प्रस्तुति का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आइए सुनते हैं विकास चर्चा। विकास चर्चा में आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सरकार द्वारा युवाओं को मुफ्त उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाली यह एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना और आजीविका को बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा कवर किया जाता है। प्रमाणन और प्लेसमेंट सफल प्रशिक्षण पूरा करने पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान की जाती है। भविष्य के कौशल के अंतर्गत नवीनतम संकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक कोर्स भी इसमें शामिल है। इन पाठ्यक्रमों की अवधि की बात करें तो आमतौर पर 300 से 600 घंटे तक की इसकी अवधि होती है, जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी शामिल है। आयु सीमा की बात करें तो 15 से 45 वर्ष के बीच नागरिक की होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो बेरोजगार युवा या स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट पात्र होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाते का विवरण होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज भी इसके पास होने चाहिए। आवेदन करने की बता दें कि आवेदन कैसे करें, स्किल इंडिया डिजिटल हब पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या अपने नज़दीकी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

पात्रता की बात करें तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, बेरोजगार युवा व कौशल उन्नयन के इच्छुक व्यक्ति होना चाहिए। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आयु व शैक्षणिक योग्यता अलग अलग हो सकती है। इसमें क्षेत्र की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाएं, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन व आतिथ्य, सौंदर्य व क्लीननेस, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, निर्माण कार्य आदि क्षेत्र इसमें शामिल है। अभी आप सुन रहे थे विकास चर्चा। विकास चर्चा में हमारा आज का विषय था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर की 2:15 होने को इस समय है दोपहर समाचारों का, जिसे हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं।

0: राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कुनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कुनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रूपये का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर

0: धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और

0: सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडिया में 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर श्री आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। अब से कुछ ही पलों में किसान परिवार सुनेंगे अपना चहेता कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम रेखा भाई सर, राम राम।
1: राम राम रामा भाई, राम राम
0: कृषि जगत का एकम होने वाला हंगला किसान भाई ने अपनो
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा।
1: साहब।
0: देखो कार्यक्रम रो टाइम भी है और देखो भांत भांति जानकारी लेना है। हाँ और देखो किसान भाई, देखो कि मधुमक्खी पालन है वो किसानारी आय बढ़ावा और एक मीठो और सफल जरियो है। तो देखो आज कार्यक्रम में आप ही बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन कई है और आपने कई के लाभ है। तो रेखा भाई साहब बताओ कि मधुपालन मक्खी पालन आप ही किस तरह कर सका सा।
1: देखो सर, आज के टाइम में जो खेती बाड़ी है और ग्रामीण क्षेत्र में आय बढ़ा और एक बेहतरीन जरियो बनी चुको है मधुपालन, जो मधुमक्खी पालन। अने कम लागत और कम जमीन में भी देखो आसानी हो आप शुरू कर सका। हाँ, यो न केवल सीधे तौर पर शहद बेची ने मुनाफो देवे बल्कि फसल ने उत्पादन ने भी बढ़ावा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है।
0: बिल्कुल किसान भैया, देखो जो आप ढांडा चोपर रो काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी रो काम कर रहे हैं, तो लाल लारे देखो कि आप मधुमक्खी पालन भी कर सको। आय में वृद्धि रो ये मुख्य स्रोत है। आप ही देखा कि मधुमक्खी पालन में केवल शहद ही नहीं मिले बल्कि अणु मूल्यवान उत्पाद भी मिले जो अंडी बाजार में भाग गए। तो आप ही देखा कि यानी मांग रो देखता देखा कि शहद में शहद जो है जो एक प्राथमिक उत्पाद है। और मैं आप ही देखा कि शुद्ध और जैविक शहद भी जो बाजार में वैसा अच्छी कीमत मिला है ऐसा।
1: बिल्कुल सा, और लारे लारे मधुमक्खी मोम भी देखो अणि में मिले है। अणि रो उपयोग कॉस्मेटिक सामान है, मोमबत्ती बनाणो है और कबाड़ उद्योग में भी वे है। यो अच्छा दामा पे भी देखो बिके है। और लारे लारे रॉयल जेली वे वो और प्रोपोलिस है वो भी देखो अणि में बने है। और यो उत्पाद अपने औषधि और स्वास्थ्य संबंधी खूबिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही महंगा तौर पर मिले है।
0: बिल्कुल किसान भाई, और देखो शहद है तो शहद का उपयोग आप ही हर चीज़ में कर सका। अंडाला देखा कि मधुमक्खी जो विष वेवे तो वो भी देखो उपयोग में आवे। अंड में आप ही देखा कि गठिया है, अन्य दवा में देखो अंडो उपयोग किया जावे यो भी उच्च कीमत में बिके। फसला रे उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुए क्योंकि कतरी बार आप ही देखा कि मधुमक्खिया है वो सबू बेहतरीन परागण करे। अंड में आप ही देखा खेत रे अड़े बड़े मधुमक्खी डिब्बा रखो, देखो कि विशेषकर जो सरजू सरसों है, सूरजमुखी है, बागवानी है। दलहन में आप ही देखा कि चना अरहर की पैदावार 20 से 40% तक वृद्धि हुई जैसा।
1: बिल्कुल सा, तो देखो अणी की शुरुआत कई तरीकों करनी तो अपने किसान भाई ने बतावा सा। मधुमक्खी पालन शुरू करवा पहले नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या पे खादी और ग्रामोद्योग आयोग है वहीं अपने 5 से 7 दिन तक रो जो बुनियादी प्रशिक्षण है वो अपने अवश्य लेना चाहे।
0: बिल्कुल सा, और सही प्रजाति रो भी चयन कर सका जिससे भारत में व्यावसायिक स्तर पर देखा कि जो इटालियन मधुमक्खी अंडो उत्तम उत्पादन मान्यो जावे क्योंकि वो शांत स्वभाव रही हुए और शहद के उत्पादन में वृद्धि करे। एक स्थान की बात करें तो स्थान चयन तो भी ध्यान रखना कि डब्बा ऐसा स्थान पर रखना जो अड़े बड़े 2-3

0: किलोमीटर दायरा फूल रहा पौधा फसला बाग हो, साफ पानी की व्यवस्था हो, तो अनु देखो कि मधुमक्खियाँ जल्दी पनपे और आपने देखो कि मधु यानी शहद जो है वो अपना आराम मिल जाए वैसा।
1: बिल्कुल सा। और देखो अणि में नरी हारी सरकारी सहायता भी मिली रही है और सरकार नरी हारी योजना भी अणि वास्ते चले रखी है। जणी में देखो भारत सरकार और राज्य सरकार मधुमक्खी पालन ने बढ़ावा देवारे वास्ते भारी सब्सिडी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करी रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन अणि योजना के तहत मधुमक्खी पालन शुरू करवाने वास्ते किसान भाई और स्वयं सहायता समूह जो है 40 से 50% की जो सब्सिडी है वह अणि में मिली रही है।
0: बिल्कुल सर। और खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग की बात करें तो रेखा भाई साहब देखो कि हनी मिशन ने अंडे तहत आपने देखा कि युवाओं और किसानों ने मुफ्त में मधुमक्खी का बक्सा है या टूल किट है प्रदान करें। पीएम मुद्रा योजना में हमें अभी देखा कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय वाते बड़ा स्तर बढ़ा हुआ है, योजना तहत बैंकों आसान अपने लोन मिल जाए। तो देखो किसान देर करनी बात रही है, आप आराम लोन लेने जो छोटो सा जो व्यवसाय है जो आप शुरू कर सको रणो आप लाभ ले सको सा।
1: बिल्कुल सर। देखो थोड़ी सी अपने यानी में ध्यान रखवा रही अगर बात है तो देखो बतावा कि जो मौसम रो प्रबंधन है वो भी अच्छी तरीकों अणि में करना जरूरी है। गर्मी रो टेम है तो देखो बक्सा ने छाया में रखना है और सर्दी में सही तापमान बनाए रखना है। मानसून के दौरान देखो यदि भी फूल कम वे है तो अणे चीनी रो घोल है जणी में देखो चाशनी बनावा वणी में कृत्रिम भोजन के रूप में अणे देनो पड़े है।
0: बिल्कुल सर। और कीटनाशकों को बचाव भी करना पड़े, यदि फसला में आप देखा कि कीटनाशकों को छिड़कावे तो मधुमक्खियां ने सुरक्षित रखना जरूरी है। जैविक खेती वाला क्षेत्र में अंडो उत्पादन बेहतर हुए तो आप ही कह सकें कि योजनाबद्ध तरीकों और सही प्रशिक्षण अगर मधुमक्खी पालन किया जाएगा तो पारंपरिक खेत लारे देखो कि एक बेहतरीन अतिरिक्त आय भी आपने मिलेगा। जनों देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा और यदि किसान भाई अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो उन्होंने मन भी प्रसन्न होगा और देखो अपनी प्रसन्नता के क्रम ने आगे बढ़ावा और होना वही प्यार सो राजस्थानी लोकगीत।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: तो किसान भाई देखो, प्यारा सो राजस्थानी लोकगीत होने, और देखो कार्यक्रम में अभी बात करांगा कि ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना कही है, आप बताओ सर। रेखा भाई साहब,
1: देखो सा, मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार एक बेहद जन कल्याणकारी योजना है। अणी योजना रो मुख्य उद्देश्य देश रा 1 करोड़ घर री जो छत है वहाँ पे सोलर पैनल लगाणो है। जणू कही कि आम परिवार ने हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके और वणारे बिजली रो जो भारी भरकम बिल है वणु राहत मिल सके।
0: बिल्कुल सर। और देखो सरकार ने योजना रहता था, तभी देखा कि सोलर पैनल लगा हुआ थे, भारी सब्सिडी सीधा आपरे बैंक के खाता में भेजे। सब्सिडी रो विवरण आप देखा कि 1 किलोवाट जो सिस्टम है वना देखो जना घर रो मासिक बिल लगभग 1,000 रुपया हुए, यानी खपत 0 150 यूनिट तक वे। तो वनों आप देखा कि 3 4 पंखा है वे चल जाए, 4 5 LED जो लाइटा है वे चल जाए, TV चल जाए। तो अनुमानित खर्च जो है वो लगभग 60,000 रुपये 65,000 आवे, और सरकारी जो सब्सिडी है वो आपने 30,000 रुपये मिल जावे। तो आपने देखा कि यह जो योजना या बहुत ही अच्छी योजना है, और आप लाभ उठे सको सा।
1: बिल्कुल सा। और 2 किलोवाट सिस्टम री बात करा तो देखो जणी रो घर रो मासिक बिल जो है वो 1500 लेन 2000 तक आवे है, यानी कि खपत 150 लेन 300 यूनिट। तो अणी रे महीने पंखा है, लाइट रे साथ लारे लारे पानी री जो मोटर है वो है, और फ्रिज है ये चाल सके है। और अनुमानित जो खर्च अगर आप देखा हाँ तो 1,10,000 लेन 1,20,000 तक अणी में लागे है। और सरकारी जो सब्सिडी है वणी में 60,000 मिले है।

0: आपरी जो वास्तविक लागत है वहीं में 50,000 और 60,000 तक अणी में लाग जावे है।
1: बिल्कुल सर। और देखो कि जटे ज़्यादा खपत वे आप कह सकें कि 3 किलोवाट या अधिक सिस्टम है, क्योंकि जण में मासिक बिल आप लिखा कि लगभग 3,000 हो ज़्यादा है। क्योंकि अगली बार देखा कि अगर सब चीज़ें चल रही है, पंखो
0: हाँ
1: चल
0: सर,
1: रहे है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, लाइटा चल रहा है, तो देखो ये सब चीज़ें अगर घर में चले तो देखो कि सामान्य उपकरण में आप देखा कि वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, पानी की मोटर है, तो उनमें आप देखा कि अनुमानित खर्च है वो लगभग 1,60,000 और 1,80,000 चावे, और सरकारी सब्सिडी वाला लगभग 78,000 आपने मिल जाएगा। तो वास्तविक लागत आप देखा कि 82,000 1,00,000 रे बच्चे आपने वास्तविक लागत मिलेगा। तो देखो जनारे घर में भी देखो कि सूर्य घर योजना नहीं है, तो देखो वही योजना रो लाभ ले सके, आपने घरे जो सिस्टम है वो सिस्टम लगे सके, तो उन्हें देखो बिजली की खपत कम होगा और यूनिट जब बचेगा वो आगे आगे चलती रहेगा सा।
0: बिल्कुल सही बात करो। तो योजना रहेगा, देखो लाभ री बात करो तो अणी रे महीने मुफ्त बिजली और बचत वे है सा। हर महीने 300 यूनिट तक बिजली रो जो बिल है वो पूरी तरह देखो शून्य वे जावे है। और अणी में जो अतिरिक्त कमाई रो जरियो भी अगर आपा देखा तो अणी में बहुत ही बढ़िया सुविधा है। यो सिस्टम सरकारी बिजली ग्रिड जुड़े थको वे। दन रे टाइम में अगर आप रो सोलर पैनल आपकी जरूरत तो ज़्यादा बिजली बने रहो है तो वटे वंचित थकी जो बिजली वह सरकारी ग्रिड में चली जावे। बिजली कंपनी वणी अतिरिक्त बिजली रो सही हिसाब करने आपरे बिल में जो पैसा है वे कम कर देवे और आप रो जो बिजली रो बिल है वणी में घणो ही लाभ मिले है।
1: बिल्कुल सर। और देखो सस्तो बिना गारंटी और लोन आप शुरू कर सका कि सरकार द्वारा बैंक माध्यम बेहद कम ब्याज दर पे आप देखा कि लोन की सुविधा भी मिल जाए। आवेदक की पात्रता की बात करें तो देखो आवेदन भारत रो नागरिक बनो चाहे, और देखो आवेदक खुद पक्को मकान बनो चाहे, जन में आप देखा कि छत सोलर पैनल लगा हुआ तो पर्याप्त जगह पर आपने देखो कि जगह बनी चाहे जेट आप लगी सका, और देखो घर रो एक वैध और चालू बिजली कनेक्शन भी बनो अनिवार्य है सर।
0: बिल्कुल सर। और आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरवाऊँ पहली जो आपने कागजात है बनाया अपने पास रखना चाहे। और जड़ी में देखो बिजली रो जो बिल है जो हाल ही जो बिजली रो बिल है वो चाहे है पिछले 6 महीना में कोई भी एक बिल जड़ी पे उपभोक्ता संख्या साफ अक्षरा में लिखा लगे वो आपने चाहिए है। पहचान पत्र में आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है, बैंक की पासबुक है या जो कैंसिल चेक है वो आपने अणी में जरूरत पड़े है। खाता चालू वेणो चाहे और वणी पे नाम वही वेणो चाहे जो बिजली बिल पे है, क्योंकि सब्सिडी रे जो पैसा है अणी खाता में आवेला। और लारे लारे छतरी फोटो जटे सोलर पैनल लगाणो है वणी खाली छतरी एक साफ तस्वीर भी वणी में चाहिए है।
1: बिल्कुल सर। तो देखो अन्य आधार पर देखो कि आप आवेदन की पात्रता और जो आवश्यक दस्तावेज है वो लेने अन्य योजना का लाभ ले सको। आवेदन किस तरह करना हो तो योजना का लाभ लेवाते आधिकारिक वेबसाइट pmsurigarh.government.in पे जाइन पंजीयन करना है। अन्य में आपनों राज्य और बिजली कंपनी का नाम चुनना है, बिजली बिल रहा उपभोक्ता नंबर भी आपने करना है। ध्यान रखना है कि सोलर पैनल हमेशा सरकार द्वारा जो पंजीकृत वेंडर है वनों आप लगवाओ, तो देखो अंडो आप जो सब्सिडी है वो लाभ मिल जावे। तो देखो कार्यक्रम में तो वादा जैसा चलती रहेगा, और देखो कि कार्यक्रम में आगे बढ़ा और होना ये राजस्थानी लोकगीत।

0: तो किसान भाई देखो प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत ढूंढ रहे, और देखो किसान भाई खेती बाड़ी रो काम कर रहे हैं, लाल लाल देखो कि शहद पालन भी कर सके, और वर्तमान में आप देखा कि बकरी पालन है वो भी किसान भाई करे तो देखो कि वणु आयरा स्रोत है वे बढ़ जाएगा। और बकरी पालन की आप बात करें तो बकरी पालन की प्रमुख नस्ला जो है वह है सिरोही, मारवाड़ी, जाफराना और बरबरी। तो आपने देखा कि बकरी पालन का प्रमुख जो लाभ है वे लाभ कई है ऐसा।
1: देखो सा कम लागत में शुरू कर सका आणि जो जो व्यवसाय है वणे और जल्दी आय दे वाळो व्यवसाय भी आपा आणे देखो कही सका लाल लाल दूध है मांस है खाद है आणि वास्ते अतिरिक्त आय भी अणु मिले है। छोटा किसान भाई होए या पछे महिला जो है वणी रे वास्ते बहुत ही उपयोगी जो व्यवसाय है आपा देखो वणे केवा हाँ कम वर्का आवे है वणा क्षेत्र।

अभी किसान परिवार सुन रहे थे अपना चहेता कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। समय दोपहर के 3 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनबीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रूपये बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाणी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां थी और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन के इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक

0: यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सेसेक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस टूर्नामेंट में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। समय दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। इसी के साथ ही हमारी दोपहर सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। सांध्यकालीन सभा के प्रसारणों के साथ संध्या 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर शाम की 5 बजने ही वाले हैं। हमारी सांधिकालीन सभा के प्रसारण मीडियम वेव चैनल पर अब आरंभ होते हैं। सबसे पहले सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: युवाओं की सोच नए सपनों की उड़ान और ज्ञान से भरी एक नई शुरुआत के साथ आपका स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में,
1: जहां हर बात होगी कुछ खास, हर जानकारी होगी नई और हर विषय लेकर आएगा एक नई नजरिया। मैं हूं साहिल।
0: और मैं हूं गार्गी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर, जहां बात होगी विज्ञान और तकनीक की, नई दुनिया से लेकर इतिहास के अनसुने पन्नों तक।
1: आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे वर्चुअल रियलिटी जैसी आधुनिक तकनीक के बारे में, जहां हमें अलग ही डिजिटल दुनिया का अनुभव कराती है।
0: साथ ही सफर करेंगे एक खूबसूरत ऐतिहासिक जगह वाल्डेस पेनिनसुला की ओर, जहां प्रकृति और समुद्र के जीवन की अद्भुत कहानी देखने को मिलती है।
1: और साथियों, इतिहास के पन्नों से जुड़ेंगे तराइन के प्रथम युद्ध के साथ, जहां वीरता, रणनीति और संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कहानी छुपी हुई है।
0: इसके अलावा जानेंगे सिनेमा जगत की मशहूर पर्सनालिटीज अमरीश पुरी और जोसेफ थेलेपति विजय के सफर के बारे में, उनकी फिल्मों को और यादगार पलों के साथ।
1: और कार्यक्रम में आगे आज होंगे आज का इतिहास, खेल जगत की अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी जरूरी बातें।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है वो मंच जहां सोच को मिलती है नई उड़ान और युवाओं को मिलता है ज्ञान का नया आसमान।
1: आप सुन रहे हैं युवाणी, युवा सोच नई उड़ान, सिर्फ आकाशवाणी उदयपुर पर।

0: दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने इंसान को एक अलग ही दुनिया का अनुभव देना शुरू कर दिया है। एक ऐसी दुनिया जहां हम बिना सच में वहां मौजूद हुए बिना भी खुद को उस जगह महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी यानी VR की।
1: बिल्कुल गार्गी, वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर द्वारा बनाई गई एक आभासी दुनिया को इस तरह से पेश किया जाता है कि यूज़र को लगता है जैसे वह सच में उसी वातावरण का हिस्सा हो। VR में 3D हेडसेट, सेंसर, मोशन ट्रैकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इंसान उस डिजिटल दुनिया को देख, सुन और कई बार महसूस भी कर सकता है।
0: अगर आसान भाषा में समझे तो VR एक ऐसे टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया है जिसे तकनीक की मदद से इतना वास्तविक बनाया जाता है कि हमारा दिमाग उसे कुछ समय के लिए असली अनुभव की तरह महसूस करने लगता है। VR हेडसेट पहनने के बाद आप चारों तरफ देख सकते हैं, उस दुनिया में घूमने जैसा अनुभव ले सकते हैं और डिजिटल चीज़ों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और आजकल जो है वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल सिर्फ गेम्स तक लिमिटेड नहीं है, मनोरंजन के अलावा इसका उपयोग जो है शिक्षा, मेडिकल ट्रेनिंग, रिसर्च, बिजनेस और सेना की ट्रेनिंग में भी किया जा रहा है। सोचिए, एक डॉक्टर को बिना किसी असली मरीज को नुकसान पहुंचाए सर्जरी की प्रैक्टिस करने को मिल सकती है और साथ ही साथ पायलट को असली विमान उड़ाने से पहले वर्चुअल सिम्युलेटर के साथ ट्रेनिंग करने को मौका मिल सकता है। वही VR की खासियत है।
0: VR का इतिहास भी काफ़ी रोचक रहा है। 1950 के दशक में मॉर्टन हेलिंग ने ऐसी तकनीक के बारे में सोचा जिसने इंसान की कई इंद्रियों के जरिए किसी अनुभव को महसूस कर सके। उन्होंने सेंसोरोमा नाम की मशीन बनाई जो देखने, सुनने और महसूस करने का अनुभव देने की कोशिश करती थी।
1: इसके बाद 1968 में इवान सुदरलैंड ने पहला हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम बनाया। यह डिवाइस जो था काफ़ी भारी था और शुरुआती स्तर का था, लेकिन इसी ने आगे आने वाली VR तकनीक की नींव रखी थी।
0: 1970 से 1990 के बीच VR का इस्तेमाल मेडिकल, फ्लाइट सिमुलेशंस, कार डिज़ाइन और मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में होने लगा। इसके बाद 1990 के दशक में यह तकनीक आम लोगों तक पहुंचने लगी और गेमिंग इंडस्ट्री के तौर पर यह लोकप्रिय बनी।
1: साथियों, आज के समय में VR हेडसेट काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन्स, 3D ऑडियो और ना मोशन सेंसर और कंट्रोल जैसी सुविधाएं होती हैं जो यूज़र को वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा वास्तविक अनुभव देती हैं।
0: VR के साथ एंग्यूमेटेड रियलिटी यानी AR और मिक्स्ड रियलिटी जैसी तकनीकों में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। AR असली दुनिया के ऊपर डिजिटल चीज़ों को जोड़ती है, जबकि मिक्स्ड रियलिटी में असली और डिजिटल दुनिया

0: आपस में मिलकर काम करती है।
1: साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में VR बहुत उपयोगी साबित हो रही है। छात्र किसी जगह या घटना को सिर्फ किताब में पढ़ने के बजाय उसे वर्चुअली अनुभव कर सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट सर्जरी की ट्रेनिंग कर सकते हैं और इंजीनियरिंग के छात्र मशीनों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
0: मेडिकल क्षेत्र में VR ने एक नई दिशा दी है। सर्जन VR सिमुलेशंस की मदद से अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। इससे मरीजों की सुरक्षा बढ़ती है क्योंकि डॉक्टर पहले डिजिटल वातावरण में अभ्यास कर सकते हैं।
1: लेकिन इस तकनीक के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। VR उपकरणों की कीमत, ज़्यादा कंप्यूटर क्षमता की ज़रूरत और लंबे समय तक इस्तेमाल करने में अपनी परेशानियां जो है वो मौजूद हैं। आने वाले समय में इसे और ज़्यादा आसान और किफ़ायती बनाने पर काम किया जा रहा है।
0: भविष्य में VR सिर्फ गेम या मनोरंजन का साधन नहीं रहेगी, बल्कि पढ़ाई, काम, मीटिंग्स और ट्रेनिंग का भी एक आसान और अहम हिस्सा बनेगी।
1: वर्चुअल रियलिटी हमें दिखाती है कि विज्ञान और तकनीक से मिलकर ऐसी दुनिया बना सकता है जहां हमारी कल्पना नए अनुभवों को बदल सकती है।

0: दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि धरती पर एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ समुद्र, रेगिस्तान और अनोखे जीव एक साथ देखने को मिल जाए? एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत और अलग रूप में नज़र आती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही खास जगह की, वाल्देस पेनिनसुला की।
1: बिल्कुल गायत्री, वाल्दे पेनिनसुला अर्जेंटीना के पैटागोनिया क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थान है। यह जगह अपनी बायोडायवर्सिटी यानी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और समुद्र जीवन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
0: वाल्दे पेनिनसुला को 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। यह जगह समुद्र से घिरी हुई है और इसका आकार भी काफ़ी अनोखा है। यहाँ आने वाले लोगों को ऐसा अनुभव होता है जैसे प्रकृति की एक खुली किताब के बीच खड़े हों।
1: इस जगह की सबसे खास बात है यहाँ मिलने वाली समुद्री जीव। वाल्दे पेनिनसुला को खास तौर पर सदर्न यानी कि दक्षिणी राइट व्हेल के लिए जाना जाता है। हर साल ये व्हेल प्रजनन के लिए अपने बच्चों को जन्म देने के लिए इस इलाके के शांत पानी में आती है।
0: सोचिए साहिल, समुद्र की लहरों के बीच इतनी बड़ी व्हेल को देखना कितना शानदार अनुभव होगा।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ पर्यटक व्हेल वॉचिंग के लिए आते हैं और प्रकृति को इतने करीब से देखने का मौका पाते हैं।
1: बिल्कुल गार्गी, और सिर्फ व्हेल ही नहीं, यहाँ समुद्री शेर, सील, पेंगुइन और कई तरह के पक्षी भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का पूरा पारिस्थितिक यानी कि जो इकोसिस्टम है वो बहुत खास है, क्योंकि यहाँ जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर जीवन की अलग अलग किस्में देखने को मिलती है।
0: वाल्दे पेनिनसुला का मौसम भी इसे और खास बनाता है। यहाँ एक तरफ सूखा और शांत रेगिस्तान इलाका दिखाई देता है, वहीं दूसरी तरफ नीला समुद्र और समुद्री जीवन की दुनिया देखने को मिलती है। यही विरोधाभास इस जगह को बाकी जगहों से अलग बनाता है।
1: बिल्कुल, और यह क्षेत्र जो है वैज्ञानिकों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ होने वाले शोध से समुद्र जीवों, उनके व्यवहार और पर्यावरण संरक्षण को समझने में मदद मिलती है। कई वैज्ञानिक यहाँ आकर समुद्र जीवन पर अध्ययन करते हैं।
0: लेकिन दोस्तों, इतनी खूबसूरत जगहों के साथ हमारी जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों का असर इन जीवों पर पड़ सकता है, इसलिए ऐसे प्राकृतिक स्थानों को बचाना बहुत ज़रूरी है।
1: वाल्दे पेनिनसुला हमें यह सीख देता है कि प्रकृति कितनी विशाल और अद्भुत है। इंसान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन प्रकृति अपनी एक अलग दुनिया है जिसे समझना और सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है।
0: दोस्तों, यह जगह सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहाँ हमें धरती ने उन जीवों को देखने का मौका मिलता है जो हमारे साथ इस ग्रह को साझा कर रहे हैं।
1: तो वाल्दे पेनिनसुला एक ऐसी जगह है जहाँ हर लहर एक कहानी कहती है और हर जीव प्रकृति का एक हिस्सा दिखाता है और हर नज़ारा हमें पर्यावरण के करीब ले जाता है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारत का इतिहास वीरता, संघर्ष और ऐसी कई घटनाओं से भरा हुआ है जिन्होंने देश की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, यह सिर्फ दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी बल्कि सत्ता, रणनीति और नेतृत्व की एक बड़ी परीक्षा थी।
4: बिल्कुल गार्गी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 इसी में लड़ा गया था। यह युद्ध उस समय के शक्तिशाली राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और गौरी वंश के शासक मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। यह युद्ध वर्तमान हरियाणा में तराइन नामक स्थान के पास हुआ, जिसे आज तरावड़ी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
3: उस समय भारत के उत्तरी हिस्से में कई छोटे बड़े राज्य थे और हर शासक अपने क्षेत्र की सुरक्षा और विस्तार के लिए प्रयास कर रहा था।

0: मोहम्मद गोरी भारत में अपनी सत्ता बढ़ाना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने भारत की ओर यह अभियान किए।
1: मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ तो उसे एक मजबूत चुनौती मिली। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शासक थे और उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक थी।
0: पृथ्वीराज चौहान की सेना में बड़ी संख्या में सैनिक, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। उस समय युद्ध में हाथियों का बहुत महत्व होता था क्योंकि वे दुश्मन की सेना पर दबाव बनाने में मदद करते थे। राजपूत सेना अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी।
1: और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की सेना भी अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। उनकी सेना में तेज गति से हमला करने वाले घुड़सवार सैनिक शामिल थे और गोरी की रणनीति तेज आक्रमण और युद्ध में चालाकी के लिए जानी जाती थी।
0: जब दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने आई तो एक बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। दोनों तरफ से बहादुरी के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने शानदार प्रदर्शन किया और गोरी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
1: साथियों, इतिहास के पन्नों के अनुसार युद्ध में मोहम्मद गोरी घायल हुआ और उसे युद्ध मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान की ये जीत जो थी वो समय, राजपूत शक्ति और एक बड़ी सफलता के लिए मानी गई।
0: लेकिन इस जीत के बाद की कहानी खत्म नहीं हुई। मोहम्मद गोरी ने अपनी हार से सीख ली और अगले ही साल यानी 1192 ईस्वी में वह दोबारा बड़ी तैयारी के साथ भारत आया। इसके बाद हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसने उत्तर भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया।
1: तो साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध इसी बात का उदाहरण है कि इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो आने वाले कई वर्षों की दिशा तय करते हैं। साथियों, अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक नया गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भारतीय सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी आवाज, अंदाज और अभिनय जो है हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शानदार अभिनेता की जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हिंदी फिल्मों में एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी जी की।
4: बिल्कुल साहिल, आज यानी 22 जून को अमरीश पुरी जी का जन्म जयंती है। उनका जन्म साल 1932 में हुआ था। उन्होंने अपनी मेहनत और बेहतरीन अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा मुकाम बनाया जिसे आज भी याद किया जाता है।
3: अमरीश पुरी जी की सबसे बड़ी पहचान है उनकी दमदार आवाज़ और स्क्रीन पर उनकी शानदार मौजूदगी। जब वह पर्दे पर आते थे तो दर्शकों का ध्यान अपने आप उनकी तरफ चला जाता था।
4: उनका सबसे यादगार किरदार रहा है फिल्म मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो। उनका मशहूर डायलॉग है मोगेम्बो खुश हुआ, आज भी लोगों की जुबान पर है और भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार डायलॉग्स में से एक है।
3: लेकिन अमरीश पुरी जी सिर्फ विलेन के किरदारों तक सीमित नहीं थे, उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स निभाए हैं। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनके सख्त लेकिन भावनात्मक पिता के किरदार को भी दर्शकों में बहुत पसंद किया है।
4: इसके अलावा घातक, करण अर्जुन, नायक, विरासत जैसे फिल्मों में भी उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। उन्होंने हर किरदार को अपनी अलग शैली और ऊर्जा से खास बना दिया।
3: उनकी आवाज़ इतनी प्रभावशाली थी कि उनके डायलॉग आज भी लोगों को याद है। फिल्म इंडियाना जॉन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में निभाए गए उनके किरदार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई गई है।
4: अमरीश पुरी जी के अभिनय को कई सम्मान मिले। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और वह हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन कलाकारों में शामिल हुए।
3: अगर उनके गानों की बात करें तो उनकी फिल्मों के कई गाने आज भी लोगों को जो है पहली पसंद है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के रोमांटिक गाने हों या फिर पारिवारिक माहौल वाले गीत, आज भी ये सब जो है याद किए जाते हैं।
4: उनकी एक खास बात यह थी कि वह अपने किरदार को सिर्फ निभाते नहीं थे बल्कि उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। यही वजह है कि उनका कोई भी रोल छोटा नहीं लगता था।
3: साथ ही उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए मेहनत और धैर्य कितना ज़रूरी है। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने थिएटर किया और लंबे संघर्ष के बाद अपनी पहचान बनाई।
4: आज अमरीश पुरी जी हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी आवाज़, उनके किरदार और उनके यादगार डायलॉग हमेशा दर्शकों के दिल में रहेंगे।
3: क्योंकि कुछ कलाकार सिर्फ फिल्म नहीं करते बल्कि इतिहास का हिस्सा बनते हैं और अमरीश पुरी जी उन्हें महान कलाकारों में से एक हैं।

0: सिनेमा के दुनिया के कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों से नहीं बल्कि अपने अंदाज, मेहनत और फैंस के प्यार से एक अलग पहचान बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ही सुपरस्टार की, जोसेफ थलीपति विजय की।
1: बिल्कुल, गार्गी विजय का जन्म 22 जून 1974 के चेन्नई के शहर में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक बाल कलाकार के रूप में की थी और धीरे धीरे तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में अपनी जगह बनाई।
0: विजय की खासियत है उनका डांस, स्क्रीन प्रेजेंस और अपने किरदार को यादगार बना देने की क्षमता। उनकी फिल्मों में एक्शन, इमोशन और मनोरंजन का शानदार मेल देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल, और उनकी शुरुआती सफल फिल्मों में गिल्ली, थिरुपाची और पोकिरी जैसी फिल्में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें एक बड़े स्टार के रूप में पहचान दिलाई।
0: इसके बाद विजय ने कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए। फिल्म तुपक्की में उनका आर्मी ऑफिसर वाला किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया था। वहीं कत्थी में उन्होंने सामाजिक मुद्दों को एक मजबूत कहानी के साथ पेश किया था।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ फिल्म मसल और सरकार ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं मास्टर और लियो जैसी फिल्में जो हैं उन्हें एक्शन और स्टाइल को नई पहचान दी है।
0: विजय के डायलॉग्स भी उनके फैंस के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। उनकी फिल्मों में आत्मविश्वास और प्रेरणा से जुड़े कई डायलॉग्स लोगों को पसंद आते हैं और उनकी स्क्रीन पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाते हैं।
1: उनका स्टाइल, उनका डांस और उनके गानों का अंदाज जो है वो काफ़ी उनकी पहचान का जो है बड़ा हिस्सा है। उनकी फिल्मों के गाने जैसे वायदिस कोलावेरी ही नहीं बल्कि विजय की अपने हिट ट्रैक्स जैसे वाथी कमिंग और अरबिक कुथू भी फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं।
0: विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक शानदार परफॉर्मर है। उन्होंने अपनी फिल्म के जरिए कई बार सामाजिक संदेश भी दिए हैं, जैसे शिक्षा, जिम्मेदारी और समाज में बदलाव जैसे विषय।
1: साथ ही उनकी मेहनत और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें कई सम्मान मिले हैं। उन्हें उन कई फिल्म अवार्ड्स और दर्शकों का प्यार मिला है। उनके फैंस उन्हें प्यार से थैलेपति कहकर बुलाते हैं।
0: विजय की सबसे खास बात यह है कि वह हर फिल्म में खुद को नए तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनकी एक अलग पहचान बनी हुई है।
1: एक बाल कलाकार से लेकर सुपरस्टार तक का उनका सफर दिखाता है कि लगातार मेहनत और अपने काम के प्रति जुनून इंसान को कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।
0: तो ये थी कहानी जोसेफ थलीपति विजय की, जिनकी एक्टिंग, डांस और अंदाज ने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है।

0: साथियों, हमारे विशेष अगले सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं विजय अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्ट्रेस एक्टिविस्ट सिंडिया लॉपर की, जिन्होंने अपनी अलग पहचान और शानदार संगीत से दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है, और साथ ही साथ उनके ह्यूमैनिटेरियन और एक्टिविस्ट राइट में भी काफ़ी उनका योगदान है।
1: बिल्कुल, सिंडी लूपर का जन्म 22 जून 1953 को न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। बचपन से ही उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट था और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत डिफिकल्टीज को फेस किया है।
0: साथ ही उनके कैरियर की शुरुआत जो है 1980s में हुई, और उनका डेब्यू एल्बम शी सो अनयूजुअल बेहद सफल रहा। इस एल्बम के कई सॉन्ग्स इंटरनेशनल हिट्स बने और उन्हें दुनिया भर में अपनी पहचान मिली।
1: उनके प्रसिद्ध गीतों में से गर्ल्स जस्ट वॉन्ट टू हैव फन

0: टाइम आफ्टर टाइम ट्रू कलर्स और ऑल थ्रू द नाइट शामिल है। उनकी यूनिक वॉइस और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने उन्हें काफ़ी पॉप म्यूजिक में सफलता दिलवाई है। अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने दुनिया भर में करोड़ों रिकॉर्ड्स बेचे हैं और कई दशकों तक म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाए रखी है। उन्होंने ब्रॉडवे म्यूजिकल किंग के बूट्स भी काफ़ी सफल रहा था।
1: साथ ही उन्हें अपने शानदार योगदान के लिए ग्रैमी अवार्ड्स, टॉनी अवार्ड और एमी अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार मिला और ईयर 2025 में उन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। साथियों, बात करते हैं दूसरे हॉलीवुड की महान एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप के बारे में, जिन्हें विश्व सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता है।
0: बिल्कुल, मेरिल स्ट्रीप का जन्म 22 जून 1949 को न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय में रुचि थी और उन्होंने आगे चलकर ड्रामा और थिएटर की पढ़ाई कर अपने कौशल को निखारा था।
1: उन्होंने 1970 के दशक में अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की और बहुत कम समय में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों और क्रिटिक्स का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने ड्रामा, कॉमेडी, म्यूजिकल और बायोग्राफिकल फिल्मों सहित लगभग हर जॉनरा में यादगार अभिनय दिया है।
0: उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में क्रेमर वर्सेस क्रेमर, सॉफीज चॉइस, द डेविल वियर्स पराडा, द आयरन लेडी एंड ममा मिया और द लास्ट पोस्ट शामिल है। अलग अलग किरदारों को पूरी सहजता से निभाने की उनकी क्षमता उन्हें सबसे अलग बनाती है।
1: साथियों, सम्मानों की बात करें तो मेरिल स्ट्रिप को 3 अकेडमी अवार्ड्स, 9 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, 2 बाफ्ता अवार्ड्स और 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2010 में उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और 2024 में हॉनररी पाल्मे डी'ओर से भी सम्मानित किया गया है।
0: मेरिल स्ट्रीप की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और सीखने की इच्छा किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में असाधारण सफलता दिला सकती है।
1: साथियों, हॉलीवुड के साथ अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की प्रसिद्ध कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अर्पिता सिंह की, जिन्होंने अपनी अनूठी चित्रकला के माध्यम से भारतीय कला जगत में एक विशेष पहचान बनाई है।
0: बिल्कुल, अर्पिता सिंह का जन्म वर्ष 1937 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और आगे चलकर कला के क्षेत्र में अपना सफर शुरू किया।
1: उन्होंने न्यू दिल्ली के दिल्ली पॉलिटेक्निक के कॉलेज ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की। शुरुआती दौर में उन्होंने टेक्सटाइल डिज़ाइन से भी जुड़कर काम किया, जिससे उनकी जो कलात्मक शैली है और समृद्ध बन गई।
0: अर्पिता सिंह की पेंटिंग्स अपने चमकीले रंगों, भारतीय लोक तत्वों और रोजमर्रा के जीवन के चित्रण के लिए जानी जाती थी। उनकी कला में विशेष रूप से महिलाओं के जीवन, समाज, स्मृतियाँ, युद्ध, शांति और मानवीय भावनाओं को गहराई से प्रस्तुत किया था।
1: और अगर सम्मानों की बात करें तो उन्हें वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनियों में विशेष सम्मान और सराहना प्राप्त हुई है।

0: साथियों, अब समय है हमारे विशेष सेगमेंट आज के इतिहास का। आइए जानते हैं आज यानी 22 जून के दिन क्या क्या इतिहास में खास बात हुई है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1940 की। इसी दिन फ्रांस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ आर्मिस्टिस पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद पश्चिमी यूरोप में स्थिति बड़ा बदलाव आया।
1: वर्ष 1941 में 22 जून के दिन जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया। इस मिलिट्री मिशंस को ऑपरेशन बर्बोसा के नाम से जाना जाता था और यह वर्ल्ड वॉर टू की सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक मानी जाती है।
0: और साथ ही साथ बात करें तो इतिहास ने न केवल बीते हुए समय की जानकारी ही नहीं देता, बल्कि उन घटनाओं को और व्यक्तित्व से भी सीखने की प्रेरणा देता है। और भारत के इतिहास में भी यह दिन खास है, क्योंकि 22 जून 1869 में के पुणे में स्वतंत्रता सेनानियों चापेकर ब्रदर्स ने ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या की, और उसका समय जो है प्लेग नियंत्रण द्वारा अपनाई गई कठोर नीतियों के कारण विवादों में थे।
1: इतिहास हमें केवल बीते हुए समय की जानकारी नहीं देता, बल्कि उन घटनाओं को और व्यक्तित्वों से सीखने की प्रेरणा भी देता है जिन्होंने समाज और दुनिया को नई दिशा दी है।
0: साथियों, अब ले चलते हैं आपको स्पोर्ट्स अपडेट की ओर। तो बात करते हैं सबसे पहले फुटबॉल की कारगिल से।
1: जी हाँ, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात। जर्मनी के कॉटे डिलेवर के खिलाफ 2-1 की रोमांचक जीत दर्ज की है। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी डेनिस उंदाव ने 2 महत्वपूर्ण गोल कर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई और जर्मनी के नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली।
0: और क्रिकेट की दुनिया से खबर यह है कि आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर श्रियंका पाटिल तकनीकी चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। साथ ही साथ बात करें टेनिस की, तो विंबलडन की तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चल रही हैं और खिलाड़ी प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम के लिए अभ्यास से जुटे हैं।
1: तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारा ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ गार्गी और मेरे साथ है
0: साहिल।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों

0: की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रूपये से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। शाम के खुशनुमा पलों को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक गीत मौजूद है। एक गीत तो हमने सुनवा ही दिया, ये शाम मस्तानी से लेकर शाम ढले तक ये गाने आपके मूड को

कटी पतंग का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में शाम के सबसे बेहतरीन गानों में से एक है। एक गीत हम आपको अब सुनवा रहे हैं बिंदिया फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। बहुत ही प्यारे से गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं अब फिल्म खामोशी से। ये गीत एक शानदार क्लासिक है जिसे किशोर कुमार ने ही गाया है।

0: श्रोताओं फिर से लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है फिल्म जिंदा दिल का एक प्यारा सा युगल गीत, शाम के माहौल में 4 चांद लगा देता है। आइए सुनें।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, एक आखिरी गीत।

हम जोली फिल्म का ये गीत है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में दिन और शाम के मिलन का एहसास कराता हुआ ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए अपने रेडियो दोस्त चंचल को। नमस्कार। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब जुड़ते हैं हमारे जयपुर केंद्र से और सुनते हैं पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी, उसके बाद होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: RBI कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को

0: मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने दिशा 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस साल पहली अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 साल तक की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। 255 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुलभ और मजबूत बनाना है। ये देश के 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है। इसे विकसित भारत 2047 के विजन से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार दिशा 2.0 में प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण के लिए विधि संजीवनी नाम का नया घटक पेश किया गया है। टेली लॉ के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर वीएलई की ओर से 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क से सभी लोगों को मुकदमों से पहले मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाए जाएंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की आज बैठक हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इसमें समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बैठक का मुख्य विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीक की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर केवी राजू की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की गई। इसके तहत हर जिले में आकांक्षी उपखंडों को जोड़ते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने की बात कही गई। इससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के अवसर मिलेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने सीएसआर निवेश से संरक्षित वन क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज सवाईमाधोपुर में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र की साझेदारी से वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म पर अच्छा काम किया जा सकता है। 2 दिन के इस कॉन्क्लेव में राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में सीएसआर के माध्यम से किए जाने वाले कामों पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान एटीएस ने जयपुर से जैश ए मोहम्मद से कथित रूप से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ी गई बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नाम की ये महिला सवाईमाधोपुर जिले की मूल निवासी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये लंबे समय से देश विरोधी नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 27 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जयपुर में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर प्रेस वार्ता की। श्री पटेल ने कहा कि इससे समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विधेयक लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में किया जा चुका है और उनसे

0: अपेक्षा की गई बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
1: वहीं श्री बेढम ने कहा कि यूसीसी संविधान के अनुरूप है, ये लैंगिक समानता की दिशा में भी अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है।
1: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा है कि जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूताओं के उपचार में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है, विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
3: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं, जो 25% अलाउड है, उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल्स और थोड़ा डिहाइड्रेशन, जो गर्मी पड़ रही है और जो ये दो तीन चीजें ही हैं, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनाकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी, तो सब पॉइंटर्स जिन्हीं पे आ रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर रही और हम भी जांच।
1: प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा और अन्य डॉक्टरों के साथ बैठक की। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की परिवेदनाएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह तक सभी विद्यालयों में शिक्षक लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
4: 1 जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं, और 1 जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
1: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने आज अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड के 41वें मुखिया के रूप में कमान संभाली। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ ने उन्हें चार्ज सौंपा। श्री राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन पर जोर देने की बात कही।
5: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं, कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा, ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं, तो साथ में उनका भौतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
1: राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त हुए डॉक्टर संतोष आनंद ने निष्पक्ष परीक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद वर्तमान में भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही आरपीएससी सदस्य के रूप में पदभार संभालेंगे।
6: प्राथमिकता ये है कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
1: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का मौका दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई से 27 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने आज राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से भेंट की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत भी मौजूद रहे। भेंट में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। रामगढ़ सेठान थानाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि दुर्घटना सड़क किनारे खड़े ट्रोली और तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच टक्कर

0: से हुई। घायल व्यक्ति को चूरू रेफर किया गया है। उधर श्रीगंगानगर के सत्यम नगर में एक निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से आज दो श्रमिकों की मृत्यु हो गई। आज विश्व ऊंट दिवस है। ये दिन दुनिया के कई हिस्सों में आजीविका के लिए ऊंटों के महत्व को बताता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ये जीव शुष्क क्षेत्रों का महत्वपूर्ण पशुधन है और भारत का गर्व माना जाता है। सहन शक्ति और सेवा का प्रतीक ऊंट लाखों लोगों के जीवन का सहारा है। ये कई दिनों और हफ्तों तक बहुत ही कम पानी के साथ जीवित रह सकता है और इसीलिए इसे रेगिस्तानी यात्रा के लिए आदर्श माना जाता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऊंट को संस्कृति और परंपराओं का वाहक बताते हुए लोगों से इसे अपना आदर्श साथी मानने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख शिव कुमार वशिष्ठ ने तैयार किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भरतपुर में जिला स्तरीय समारोह विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के बंद बारेठा पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बंद बारेठा की पाल का निरीक्षण किया और परियोजना के विस्तार कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आनंदी ने भरतपुर का दौरा कर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। संभागीय आयुक्त नलिनी काठोतिया ने संभाग स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत, विभागीय समन्वय और उद्योगों तथा आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। उन्होंने विद्युत संबंधी शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर निर्वाचन विभाग की ओर से एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत सरकारी और निजी संस्थानों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में भरतपुर को पायलट परियोजना में शामिल किया गया है। स्किल डेवलपमेंट फॉर यू कार्यक्रम के तहत युवाओं की क्षमता और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आई बी सुब्बा राव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं का डाटा तैयार कर उनकी रुचि और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम पंचायतों में विकास और जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई। आमजन को राहत देने के लिए जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टे, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, उपयोग परिवर्तन, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर और शहर में वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वैर उपखंड के सरसेना

0: थाना गांव और भरतपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में किसान कल्याण, आयुष्मान भारत, पक्के आवास, सैन्य सुविधाओं और अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 500 युवाओं, विद्यार्थियों और किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी स्वास्थ्य, जैविक खाद, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी तथा किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शहर में जल निकासी व्यवस्था से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य ड्रेन के निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की तथा बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर अचनेरा फोरलेन सड़क चौड़ी करने के काम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त होती है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार, केंद्र सरकार हर नागरिक तई न्याय रिपूक बत्ती सुलभ करावन सारू 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल माए लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथ बैठक करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता UCC माथे विधेयक बनावण ने उच्च स्तरीय समिति बनाई और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कयो कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है आने एक दूजाऊ जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।

समाचार के साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार दिशा 2.0 योजना ने मंजूरी दे दी है। वो कार्यक्रम इस साल 1 अप्रैल 31 मार्च 2031 तय 5 साल तयरी अवधि रह सारू नुआ रूप में लागू करो जाएगा। 255 करोड़ रुपया रा वित्तीय परिवहन वाली ई योजना रो मकसद हर रहवासी तई न्याय री पहुँच सुलभ और मजबूत बनावनो है। आ देश रा 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता ने आगे बढ़ावे है। इनने विकसित भारत 2047 रा विजन हुई जोड़ी जा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुजब दिशा 2.0 माय प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण सारू विधि संजीवनी नाम रो नुओ घटक पेश करी जो है। टेली लोरी मार्फत ग्राम पंचायत थर माथे वीएलई कानियों 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्र रा नेटवर्क रू सगड़ा लोगों ने मुकदमा माए पहला मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगा। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता सारू ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाया जाएगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स रा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए री आज बैठक हुई। 2 दिन री ई बैठक री सदारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रिया है। इनमाए समूरा 11 सदस्य देशों रा सुरक्षा प्रमुख हिस्सों ले रिया है। आ देशा में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात भेड़ा है। अबार माए गैर पारंपरिक हिफाजती चुनौतियां बैठक रो खास मुद्दों है। इनमाए राष्ट्रीय हिफाजत रा खतरा ने तेजियों बदलता स्वरूप और उभरता सुरक्षा जोखिमा माए नई तकनीक री भूमिका माथे चर्चा करी जावे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नीति आयोग रा सदस्य प्रोफेसर केवी राजूरी मौजूदगी माए अहलकारा रे साथ मीटिंग करी। मुख्यमंत्री रेवास माते हुई ई बैठक में विकसित राजस्थान रा संकल्प ने पूरो करण सारू जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी जी। इन रे तहत हर जिला में आकांक्षी उपखंडा ने जोड़ता स्थानीय जरूरता और संसाधना मुजब विकास योजना में बनावण री बात कही जी। आमाए माली गतिविधियां री रफ्तार बद सकेला साथे स्थानीय थर माथे रोजगार और निवेश रा मौका मिलेला। जंगलात महकमारा मंत्री संजय शर्मा सीएसआर निवेश उन संरक्षित वन हल्का माए विकास माथे जोड़ दियो है। श्री शर्मा आज सवाई माधोपुर माए राज्य

0: थर रा सीएसआर कॉन्क्लेव रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा हा। वणा कयो के जंगलात महकमो अर कॉरपोरेट हलकारी साझेदारियों वन्य जीव संरक्षण जैव विविधता और इको टूरिज्म माथे चोखो काम करियो जा सके है। दो दिन रा ई कॉन्क्लेव में राज्य द्वारा संरक्षित वन हल्का में सीएसआर मार्फत करिया जावण वाला काम माथे चर्चा करी जावे। राजस्थान ईटीएस जयपुर जैश ए मोहम्मद री कथित रूप में जुड़ी एक महिला ने गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस री सूचना माथे पकड़ी जी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नामरी आ महिला सवाई माधपुर जिला री मूल रहवासी है। शुरुआती जानकारी मुजब आ लांबा बगतू देश विरोधी नेटवर्क साथे काम कर रही। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी बतायो के यूएपीए एक्ट तहत गिरफ्तार करी जी आरोपी महिला ने अदालत में पेश करी जा जठे उन्हें 27 जून तक रिमांड सारू भेज दी जा है। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज जयपुर में समान नागरिक संहिता यूसीसी ने लेर प्रेस वार्ता करी। श्री पटेल कहो के इन में समानतारी भावना ने बढ़ावो मिलेला और साथ ही भेदभाव ने कम करण में मदद मिलेला। राज्य सरकार यूसीसी लागू करण री दिशा में कदम बढ़ावता विधेयक लावण सारू ऊंचा थर्री कमेटी बनाई है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में ही किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: श्री बेढम कहो के यूसीसी संविधान मुजब है और लैंगिक समानता री दिशा में अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो महिला हो या पुरुष हो उनको समान नागरिक संहिता लागू हो जिससे सभी वर्गों सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं व्यवस्थाएं उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है कि जोधपुर रा पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूतवा रा इलाज में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ की देखरेख में वारो इलाज करियो जावे। मीडिया साथे बतल में चिकित्सा मंत्री कहो के कोटा बीकानेर और जोधपुर रा मामला न्यारा न्यारा है आने एक दूजा जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।
3: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं जो 25% अलाउड है उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल और थोड़ा डिहाइड्रेशन जो गर्मी पड़ रही है और जो ये दो तीन चीजें ही हैं तो हमारी डॉक्टर्स की टीम मैंने जयपुर में भी गायनेकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी तो सब पॉइंटर्स जिन्हीं पे आ रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है जिसका
0: प्रसूतवारा स्वास्थ्य ने लिए जिला कलेक्टर अशोक रंजन मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर बी एस जोधा और दूजा डॉक्टरों के साथ मीटिंग करी मामलारी जांचारू कमेटी बनाई जी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज आपरा रहवास माते जन सुनवाई करी। इस दौरान वना लोगों री फरियादा सुनी और वाजिब निपटारा रा आश्वासन दिया। मीडिया साथे बतलमाए श्री दिलावर कहो के नुआ शैक्षणिक सत्र सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है। वना कहो के जुलाई रा पहला हफ्ता ताई सगली स्कूला में शिक्षक लगावण री कोशिश करी जावे।
4: एक जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं और एक जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाए।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा नुआ अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ आज अध्यक्ष रा ओधो संभाल लियो। वणा बोर्ड रा 41वां मुखिया रा रूप में कमान संभाली। बोर्ड रा प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ वाने कामकाज सौंपियो। श्री राठौड़ मीडिया साथे बतल में पढ़ेसरा रा समग्र विकास सारू नुवी शिक्षा नीति रा वाजिब क्रियान्वयन माथे जोर देवण री बात कही।
5: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस राष्ट्रीय

0: शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए, तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं तो साथ में उनका भौतिक शैक्षिक आध्यात्मिक ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
1: राजस्थान लोक सेवा आयोग माय सदस्य ओदा माते नियुक्त व्या डॉक्टर संतोष आनंद निष्पक्ष परीक्षा ने पहली प्राथमिकता बताया है।

0: आपके सहयोग से करेंगे।
1: राजस्थान लोक सेवा आयोग माय सदस्य ओदा माते नियुक्त व्या डॉक्टर संतोष आनंद निष्पक्ष परीक्षा ने पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद अबार माय भीलवाड़ा रा माणिकीलाल वर्मा राजकीय कॉलेज रा प्राचार्य रूप माय काम कर रिया है। खबर नवीसा साथे बतलमाय वणा कयो के वे बेगाई आरपीएससी सदस्य रा रूप माय ओ दो संभाल लेवेला।
2: प्राथमिकता ये ही कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
1: बीएसएफ रा महानिरीक्षक एमएल गर्ग आज राज्य रा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रे साथ मिलिया। ई दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सामंती मौजूद रिया। ई मुलाकात में न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जी। सीकर जिला रा रामगढ़ सेठान हल्का में आज सवारा एक सड़क हादसा में दो लोगों की मौत वेगी, वठे एक दूजो घायल वे गयो। रामगढ़ सेठान थाना अधिकारी प्रकाश चंद्र बतायो के हादसों सड़क रे किनारे खड़ा ट्रोला रे तेज रफ्तार ट्रेलर बीच टक्कर वियो, घायल ने चूरू रेफर करी जा है। उठने श्री गंगानगर रा सत्यम नगर में एक नुआ बन रहा भवन में करंट लागण, दो लोगों की मौत वेगी। मौसम राज्य में लाड़ला कुछ दिनों चल रही प्री मानसून गतिविधियों लोगों ने हीट वेव और करड़ी गर्मियों आराम मिल रियो है। एक रे पछे एक लगातार सक्रिय वेरिया पश्चिमी विक्षोभों कई जिला में आंधी बिरखारो दौर बनियोड़ो है। आज ही प्रदेश रा कई हल्का में मौसम रो मिजाज बदलियो रियो। मौसम महकमा मुजब आंधी बिरखारी गतिविधियां जयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग में 26 जून तक बनी रहने की आस है। इस दौरान कठे कठे धूल भरी आंधी ही चल सके है। दूजी कानी बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम साफ रहने की आस है, फिर वही कुछ थोड़ा बादल छाए जा रह सके है। न अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्र सरकार हर रहवासी ताई न्यायरी पूग बत्तियों बत्ती सरल और मजबूत करण सारू दिशा 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल सारू लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथ मीटिंग करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी माथे विधेयक बनावन सारू ऊंचा तरी समिति बनाई। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है के कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है अने एक दूजा जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए। एंड रे साथ ही प्रादेशिक समाचारों ओबुलेट नठे पूरो वियो। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर।

0: आपण देखा तो बेल हे, मानव श्रम हे, आणि तुलना में आधुनिक कृषि यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर हे, सीड ड्रिल हे, कंबाइन हार्वेस्टर हे और रोटावेटर जो है, अणि रे उपयोग न केवल समय री बचत वे है बल्कि पैदावारी जो गुणवत्ता है और मात्रा दोया में भारी ही सुधार वे है।
1: बिल्कुल सर। और देखो कृषि यंत्रीकरण बात करें तो उत्पादन और उत्पादकता में लाभ निम्न वे, जड़ में आप सबसे बड़ी बात करें तो समय री बचत और सही समय पे बुआई बीज है। क्योंकि कृषि में नया नया यंत्रीकरण यह है कि जटे श्रम कम लगे, समय कम लगे तो देखो मुनाफा हुए वे। और आप ही देखा कि कृषि में सही समय पे बुआई और कटाई रो सीधो संबंध उत्पादन हुए। जल्दी तैयारी बात आप ही कर सका कि फसल में काटवारे बाद अगली फसल में खेत तैयार करवा पहले हफ्ता में समय लगे तो आप ही कह रहा रोटावेटर और कल्टीवेटर की मदद कुछ घंटा में काम जो है वो आसान हो जाएगा।
0: बिल्कुल सा, और देखो टाइम पे बुआई भी बीज आवे, जणी मैंने सीड ड्रिल या हैप्पी सीडर जैसी मशीन है उन्हें टाइम पे समय पे बुआई करो, बीजा रो जो अंकुरण है वो भी बहुत तरीकों वे अच्छी तरीकों वे है, जणी पैदावार जो है 15% लेन 20% तक जो है बढ़ जावे।
1: बिल्कुल किसान भाई। और देखो आधुनिक युग है तकनीकी युग, और आप ही देखा कि तकनीकी युग में जो परिवर्तन आ रहा है, कृषि उत्पादन में जो नया नया यंत्र आ रहा है तो देखो आप ही वे खरीदने अपनी लागत ने बढ़ सका। सही तरीका मायना में आप ही देखा तो इनपुट री बचत वे वंडो सही उपयोग वे, जड़ में आप ही देखा कि मशीना में खाद है, बीज है, पानी रो जो बिल्कुल सटीक और सही मात्रा सुनिश्चित करें। कई बार आप ही बात करना कि बीज और उर्वरक ड्रिल, तो ड्रिल एक ऐसी मशीन है जड़ों आप ही देखा कि बीज और खाद मिट्टी में सही गहराई पे निश्चित दूरी पर डालें। पहला आदमी क्या करता है कि हाथ उ फेंकने डालता, अब जो
0: हाँ
1: ड्रिल मशीन आएगी तो वो काम जो है ज़्यादा समय की अपेक्षा कम समय में पूरा कर ले। अणु देखो एक तो बीज की बर्बादी रुक जावे और आप ही देखा कि पौधा ने बराबर पोषण मिले ऐसा।
0: बिल्कुल सही बात की दी है रामा भाई, और देखो एक तो सटीक छिड़काव भी वही जावे, आधुनिक ड्रोन से या पावर स्प्रेयर से वन कीटनाशक रो जो छिड़काव है वो समान रूप हुए, जनियों कई बीमारियां भी कम वे और फसल है वह भी सुरक्षित रहवे है।
1: बिल्कुल सर। और कटाई के दौरान नुकसान में भी कमी हुए, पारंपरिक तरीका में आप ही देखा कि कटाई है, मड़ई है, ओसई है, अन्न में कर्म में देखा तो काफ़ी अनाज जो है खेत में गिर जाए और मौसम की खराबी के कारण कतरी बार देखो अचानक बारिश आई जाए तो बर्बाद भी जावे। एक आवे देखो कंबाइन हार्वेस्टर, तो कंबाइन हार्वेस्टर कई वे और थ्रेशर मशीन है वह भी आई गई है तो वन में आप ही देखा कि कटाई लेन मटाई लेने काम अति तेजियों और सफाई वे जो काम अपने हाथों आप ही नहीं कर सकें।
0: हाँ सर,
1: और कटाई के बाद आप ही देखा कि वे वाला नुकसान है वो लगभग 5-10% कम भेजा जानो। आप ही देखा कि सीधा तौर पे आपने उत्पादन में बढ़ोतरी हुए, कतरी बार आप ही देखा कि अकस्मात मौसम भी चेंज भैया
0: हाँ
1: वर्षा
0: सर,
1: वाली स्थिति हुई जाए तो देखो ये मशीन आई ये मनुष्य की अपेक्षा शीघ्रता शीघ्र काम कर ले और वही सामान आप बाजार में बेचने अधिक लाभ कमा सको सा।
0: बिल्कुल हाँ जी बात की थी ऐसा, और देखो लाल लाल जो फसल संघनता है वणी में भी वृद्धि हुई है, पहली एक फसल की कटाई और दूसरी फसल की जो तैयारी है वणी बीच में लंबो अंतराल व्यवहार के कारण किसान भाई जो है साल में देखो केवल एक या दो फसला ही ले पावे है,
1: बिल्कुल
0: और
1: सर।
0: अब यूँ है कि यंत्रीकरण के कारण खेत खाली वेता ही तुरंत अगली फसल तैयार शुरू हो जाए, अणियों कही किसान भाई साल में तीन फसला जैसे कि रबी है, खरीफ है और जायद है आसानी ले सके, जमीन रो अधिकतम उपयोग एवं देखो कुल जो वार्षिक उत्पादन है वो भी दोगुनो वे जावे।
1: बिल्कुल सर। और देखा कि श्रम की कमी और समाधान और कठिन परिश्रम भी मुक्ति मिल रही है। खेती रे जो आप देखा कि पीक सीजन हुए जन में बुआई कटाई समय वे अक्सर देखा कि मजदूरी कमी हुई जाए, कई बार आप देखा कि घरों काम भी चालू और मजदूरान बुलाओ हो तो टाइम पे आवे भी नहीं,
0: हाँ
1: तो वही
0: सर,
1: खेती बाड़ी में भी देखा कि मजदूर जितना जरूरत भी वे आवे नहीं। अगर आपके पास मशीन वेगा तो आप काम जो है वो रुकेगा नहीं, मशीन अनि कमी ने पूरा करे, खेती कठिन शारीरिक श्रम कम करने अधिक आकर्षक लाभ बनाए। अब आप ही बात करें कि जो यंत्रीकरण है वंडो उत्पादन पे कई प्रभाव पड़े, जिससे बुआई की बात करें तो बुआई पहला क्या करता हाथ छिटकने करता,
0: हाँ सर,
1: लेकिन अब कई परिवर्तन कर दी तो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल की दो जड़ में कई वे समान दूरी और गहराई के कारण 15-20% अंकुरण वे वैसा।
0: और देखो सिंचाई जो है देखो पहली करता है नाली द्वारा करता है जड़ी में पानी की बर्बादी वेती है, अबे कई भी ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई करा जड़ी में टपकदार या फवार द्वारा आप सिंचाई करा हाँ जड़ी कई कम पानी में देखो अधिक क्षेत्र की सिंचाई वे जावे और जो पौधा जो बेहतर वृद्धि वह भी हाउ तरीकों वे जावे।
1: बिल्कुल सर। और देखो कटाई और मड़ाई की बात करा तो हसिया है, बैलों द्वारा है या आधुनिक हस्त द्वारा भी काम करता, वन में देखो समय भी ज़्यादा लागत हो, श्रम भी ज़्यादा लागत हो और देखो कि जितनी उपज मिलनी चाहती वह नहीं मिलती। लेकिन अभी देखो तकनीक ये कि कंबाइन हार्वेस्टर वनों देखो कि मौसम रे जोखिम में बचा हुए अनाज की बर्बादी में कमी हुए, तो आप ही कह सका कि कृषि यंत्रीकरण केवल श्रम ने कम नहीं करे बल्कि प्रति हेक्टर उत्पादन ने भी बढ़ा वैसा। तो देखो आपने यूज कहना है कि कृषि खेती बाड़ी करो, लाला पशुपालन भी करो, लेकिन कृषि में जो आधुनिक यंत्रीकरण आ रहा है अणु अपनी उत्पादकता बढ़ाओ। और देखो उत्पादन बढ़ेगा तो किसान रो मन भी है वो भी खुश होगा,
0: हाँ
1: और
0: सर,
1: देखो मन खुश है तो आप ही मनोरंजन भी करावा
0: हाँ
1: और
0: सर,
1: हुनावा यो राजस्थानी लोकगीत।

0: राम राम रेखा भाई। सर राम राम।
1: राम राम रामा भाई, राम राम
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला हंगला किसान भाई ने अपनो
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सर।
1: साहब।
0: देखो कार्यक्रम रो टाइम भी है और देखो हंगला किसान भाई देखो चौपाल में बैठ गया है और देखो कार्यक्रम में ज्ञानवर्धक बात भी करा, लाला रसाई लोकगीत भी होना हुआ, संदेश भी होना हुआ। और देखो आज रहने कार्यक्रम में आप ही बात करांगा कि जो को कृषि में जो आमूलचूल परिवर्तन नहीं रो है, ये आप यूँ कह सकते कि कृषि में जो यंत्रीकरण आई रो है, तो वनों देखो कि उत्पादन तो बढ़ रहा है, लाल लाल देखो कि लागत घटाओं में भी काम आई रो है। तो कई तरीकों आप ही कृषि में यंत्रीकरण रो उत्पादन करा जणों आप ही ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सका। तो आज यानी कार्यक्रम में बात करांगा कि कृषि यंत्रीकरण री कृषि में कई उपाय देता है और वनडो कई काम में आप ही लेने लागत अच्छी कर सका। हाँ सर
1: बिल्कुल सर, देखो सर, कृषि यंत्रीकरण रो जो आधुनिक खेती में उत्पादन बढ़ावा और लागत घटावा में सब महत्वपूर्ण योगदान है। पारंपरिक तरीकों

0: किसान भाई देखो, राजस्थानी लोकगीत हुंडे और देखो लाला रेवाचित भी कर रहे हैं। और देखो मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्रांत सूचना के आधार पर देखो कि आवला समय मौसम किस तरह रहेगा वंडिया पी जानकारी दा। तो देखो आगामी दिनों में हल्की बारिश और हल्का बादल रहे और इस संभावना है। और आप ही देखा कि हवारी गति 14-25 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, वेग दक्षिण पश्चिम चलेगा। और अधिकतम तापमान देखा तो 40-41 डिग्री और न्यूनतम 25-26 डिग्री रहे और इस संभावना है। जटे सामान्य बात करें तो देखो खरीफ की बुआई वे विश्वसनीय स्रोत में मक्का मूंगफली और दाना रे उत्तर बीज की व्यवस्था करनी है ताकि मानसून रहते जल्दी बोई कर सका। गोबर की खाद अच्छी तरह खेत में मिलानी है। हरी खाद की बात करें तो हरी खाद में बोई गई सनई और ढेचारी फसल 50% पुष्पन व्यवस्था में जुताई करने अच्छी तरह खेत में मिलानी है। जट अभी मूंग की बात करें तो मूंग की फसल में पी शीरा मोजेक रोग लग जाए अंडी रोकथाम वास्ते डाई मिथ्योएट 30 cc 1 लीटर प्रति पानी में मिले ने आप ही छिड़काव करांगा तो देखो बढ़िया वेगा सा।
1: हाँ सा और अणी टाइम पे देखो टमाटर ही जो पौधे वणवार वास्ते बहुत ही उपयुक्त है और बीजा ने थाइरमू 250 ग्राम प्रति किलोग्राम दर उपचार करने पौधशाला में बोई कर लेनी है। लाल लाल कपास में भी आपने निराई गुड़ाई करते रहना चाहे सा और सिंचित मूंगफली री बुवाई रो उपयुक्त टाइम जून माह रे प्रथम सप्ताह दूसरे सप्ताह तक है और मिट्टी जांच के आधार पे अंतिम जुताई उपेली प्रति हेक्टेयर 250 किलोग्राम जिप्सम मिलावणो है। बुवाई रे टाइम पर प्रति हेक्टेयर 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलो यूरिया ने मिलावणो है।
0: बिल्कुल सा। और देखो लाल लाल देखो कि बागान की बात करा तो फला में नया बाग लगा होते गडेरी खुदे करनी है, उन्हें खुल्लो छेड़ देना है। हानिकारक कीटा रोगाणु होते खरपतवार और बीज नष्ट हो जावे। पशुओं की बात करें तो दुग्ध उत्पादन बढ़ावा होते दुधारू पशु ने संतुलित आहार देना है। और आपने ध्यान रखना कि मौसम में जो चेंज वे रहे हो कंधान वर्खा पानी वेरी कंधान तावड़ो पड़ रहे हो तो जिंदा तावड़ो पड़ रहे हो वंदा ध्यान रखना कि पशुओं रहे जो दाना है पानी री है वह उचित व्यवस्था करनी है। जिंदा लगे वर्खा पानी वे रहे हो तो देखो कि गंदो पानी खेत में वाड़ा में नहीं आवे, वणे साहब वहाँ सुरक्षित बांधना है। चारों तरफ हवा नहीं आवे तो बोरिया तापड़ा बांधना है। तो आने आधार पर आप देखो कि कृषि तो करांगा लाल लारे पशुपालन भी सुरक्षित रहेगा तो देखो अपना जो परिवार है जो अपना आर्थिक समाज है और आपने जो आर्थिक स्थिति वह भी सुधरेगा। और देखो कार्यक्रम में मनोरंजन भी बनो चाहे तो रेखा भाई साहब एक राजस्थानी लोकगीत थोड़ा वैसा
1: हाँ सा हुणा वसा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे

0: आओगे?
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो किसान भाई देखो, प्यारो से रासायनिक लोकगीत होने और लाल लाल देखो संदेश भी होने सा। और देखो आप बात करांगा कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का ही अंड पापी बात करांगा सा।
4: हाँ सा, तो देखो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन भारत सरकार की एक विशेष केंद्रीय योजना है जिन्हें देश रे मई ने आत्मनिर्भरता और किसान री आय बढ़ावार वास्ते मीठी क्रांति के रूप में भी शुरुआत की दी है सा। यो मिशन पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा घोषित है और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड रे सहयोग चलायो जा रो है और मुख्य फोकस पारंपरिक तौर तरीका की जगह वैज्ञानिक तरीकों मधुमक्खी पालन ने बढ़ावो देनो है।
3: और देखा कि अने पूरा मिशन में बेहतर ढंग से समझ आते देखो मिनी मिशन में बांटियो है। अने मैं आप ही देखा कि उत्पादन और कौशल विकास जेटा आप ही देखा कि सरकार जो है नए मधुमक्खी पालक में बक्सा है, उपकरण है, सेफ्टी किट खरीदवा होते 50-75% तक सब्सिडी दे। आप ही देखा कि लाल लाल मुफ्त ट्रेनिंग भी देवे। जड़ में आप ही देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र वेगी के वी कर माध्यम में देखा कि किसान और बेरोजगार युवाओं ने देखो मधुमक्खी पालन वाते व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दियो जाए सा।
4: बिल्कुल सा, और लारे लारे फसल ने दोहरो फायदो भी है। मधुमक्खिया खेतारे महीने परागण ने बढ़ावे है जड़ मुख्य फसल जैसे कि सरसों है, सूरजमुखी है, बागवानी फसला है, अनारी जो पैदावार है अपने आप 20-30% तक जो है बढ़ जावे है।
3: और देखो आप ही बात करना कि कटाई के बाद प्रबंधन और बाजारी बात करना तो मधु क्रांति पे आप ही देखा कि सरकार एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनायो। अटे आप ही देखा कि पंजीकृत किसान सहदरी पूरी जाँच हुए जिनमें मिलावट नहीं रुके और किसान सीधा बड़े खरीदार और नियत लारे बाजार में भी जोड़ सका। हाँ सर
4: बिल्कुल सर, और लेब और प्रोसेसिंग यूनिट अणी में भी जगह जगह पर शहदरी जो शुद्धता है जाँच पार वास्ते टेस्टिंग लेब्स वे और शहद ने साफ वो पैक करवा वास्ते प्रोसेसिंग सेंटर है वी भी बनाया जा रहा है।
3: बिल्कुल सर, और देखा कि शोध और तकनीक की बात करें तो अंडो उद्देश्य अलग अलग जलवायु हिसाब मधुमक्खी ने बेहतर नस्ल तैयार करनी है, मनमें विवाह वाली बीमारी और बचाव तकनीक ने विकसित करना है, शहद के अलावा जो महंगा उत्पाद है अंडे बारे में भी जानकारी देनी है। तो अपने आधार पर आप कह सकते हैं कि जो सरकार जो मधुमक्खी पालन और जो शहद जो मिशन बनाए हुए अंडो उद्देश्य है कि शहद बेचवा तक की सीमित राखणों बल्कि छत्ताओं निकलों वाला जो अन्य कीमती उत्पादन है जिस तरह आप दो मोम वे गया है, दूसरा सामान वे गया है, तो ये देखो कॉस्मेटिक दवा है अंडो भी उपयोग आप कर सकता है।
4: बिल्कुल सा, और रॉयल जेली और प्रोपोलिस जो है इम्यूनिटी बढ़ावा से दवाइयों में उपयोग हुए है, तो अनारो भी देखो जो है अणी में देखो उत्पाद मिल जावे है और बाजार में बहुत ही महंगा बिके है। तो देखो अणी तरीकों मधुमक्खी जो है वो देखो जहर है जने तरीकों आप कहवा घटिया है कणी जी बड़ी बीमारियां है वणी रे इलाज में भी काम में आवे है।
3: बिल्कुल, क्या और मतलब है कि मधुमक्खियों रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो हर चीज़ काम में ही रही है।
4: हाँ
3: जैसे मधुमक्खी जो शहद है वो अपने काम में ही रो है, मधुमक्खी का जो छत्ता है वह अपने काम में ही रहा है, मधुमक्खी निकल वाला जो पॉइजन है जहर है वनों भी देखो अपने दवाएं बन रही है। तो आप ही कह सकते हैं कि किसान भाया खेती बाड़ी पशुपालन डेयरी उत्पाद है लाल लारे अगर छोटो मोटो अगर मधुमक्खी का पालन भी करेगा क्यों जो सरसों है छोटी मोटी दाला वाला वगैरह तो वटे कहीं करनो कहीं नहीं है, बक्सा है वह रखना है, तो वहीं आधार पर देखो कि आपने लाल लारे शहद भी मिल जाएगा और बाजार में बेचोगा तो उचित दाम भी मिल जाएगा। और देखो किसान रोजाना मन प्रसन्न रहेगा तो वो देखो गीत लोक संगीत भी खुणेगा सा।
4: बिल्कुल,
3: तो देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और देखो किसान भाई मनोरंजन करना भी जरूरी है। तो रेखा भाई सा होना हो राजस्थानी लोकगीत।

0: किसान भाई देखो, राजस्थानी लोकगीत हूं रहे हैं और लाला देखो संदेश भी होने रहा। और देखो कार्यक्रम में आगे बात करेंगे कि जो कृषि उत्पादन की जो ब्रांडिंग है वह आप किस तरह कर सका। तो देखो कि कृषि उत्पाद जो बात करा तो खेती बाड़ी जो भी उत्पाद मिले तो वंडो है कि फसल फल सब्जी या प्रसंस्कृत उत्पाद ने सीधा थोक बाजार में बिना नाम रे बेचवार बजाय एक विशेष नाम दे देना, जिन्हें आप किस तरह का लोगो वेगी है, ब्रांड रो नाम वेगियो है, अच्छी पैकेजिंग डाले अगर बाजार में उतारांगा तो ज्या कीमत आपने एक सामान्य फसल या उत्पादों मिलेगा वह आपने जो ब्रांड है या लोगो है वो अच्छी मिल सके ऐसा। तो देखो आज समय में ग्राहक जो है वह सेहत रो भी ध्यान रखे, शुद्धता रो भी ध्यान रखे, तो आप क्यों ना कृषि उत्पादन की जो ब्रांडिंग है वह बढ़े ने किसानारी आय बढ़ाना एक दमदार जरियो भी बने सका। तो देखो कृषि ब्रांडिंग का मुख्य लाभ कई है सा।
1: देखो सब बिचौलियों मुक्ति और सीधा बाजार जुड़ाव ब्रांडिंग रे बाद में आप अपना जो उत्पाद है वो सीधा मॉल है, सुपरमार्केट है, ऑर्गेनिक स्टोर है या ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म से जैसे कि किसी भी कंपनियां है वहाँ पे आप बेच सको हो।
0: बिल्कुल साहब, जैसे बेहतर प्रीमियम दाम की बात करा तो देखो आप यूँ कर सका कि मंडी में जो गेहूं या चावल है वो बिना नाम रहा, जिससे आप देखा कि कम कीमत में मिले, अच्छा साफ करा, ब्रांड नाम देखा और आकर्षक पैकिंग हुए, तो वन में दाम में थोड़ा अंतर हुए लेकिन व्यक्ति यूज चाहे कि शुद्धता वाली चीज़ मिले और जल्दी बन जाए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: सर,
0: आज आजकल कण पर समय नहीं है। हर व्यक्ति देखे कि कम समय में जल्दी काम पूरा हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, और हर व्यक्ति जो है वो ब्रांडेड साफ सुथरी चीज़ें ने पसंद करे। कटे भी देख लो आप, खाओ पीवा में देख लो, कपड़ा में देख लो, अन्य चीज़ों में भी देख लो, तो यू आप ही कह सका कि एक बेहतर और प्रीमियम दाम जो है वो ब्रांडिंग को अपने मिल सके ऐसा।
1: बिल्कुल सर। और जो ग्राहक है बड़ा रो भरोसा है, देखो कि यदि आप उत्पाद पे आपके ब्रांड और लेबल लगा होगा तो ग्राहक जो है वही शुद्धता है, गुणवत्ता है, वहीं पे भरोसा भी करेगा और बार बार जो अच्छी क्वालिटी है वहीं पे मिलवाड़ा पे देखो ग्राहक आप रो जो वफादारी है वहीं पे देखो वहीं जाएगा कि
0: बिल्कुल
1: वड़ा
0: सर,
1: नहीं लगेगा कि तो जो उत्पाद है शुद्धता भी है और गुणवत्ता भी है तो देखो वहीं ने आसानी हुई खरीद सकेला।
0: बिल्कुल। और आप ही भी देखा कि कहीं भी दुकान पे आप ही सामान लेवा जावा और जो दुकानदार है वो अगर व्यवस्थित आपको बात करेगा, व्यवस्थित प्रकारों सामान देगा, तो आपने जावर इच्छा होगा
1: हाँ सर,
0: और कोई चिड़चिड़ होगा, क्रोधी स्वभाव होगा और शुद्धता रो ध्यान भी नहीं रख रहे हो, मोल रो भी ध्यान नहीं रख रहे हो, तो आप ही बड़े जानो कम पसंद करेंगे। तो
1: बिल्कुल
0: आटे
1: सही
0: आप ही
1: बात है।
0: देखा कि एक विशिष्ट पहचान है जिसमें आप देखा कि खास तकनीक वेगी है या खास क्षेत्र वेगी है, जन में आप ही देखा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ प्रसिद्ध है। देखो कटे आम प्रसिद्ध है, कटारी सौंफ प्रसिद्ध है, कटोर जीरो प्रसिद्ध है, तो वणिज्य ब्रांड या वणि वस्तु आप लेना पसंद करेंगे। अब आप ही बात करेंगे कृषि उत्पादन की ब्रांडिंग किससे करा, तो बात तो करेंगे लेकिन किसान भाई मनोरंजन करावा और हुनावा राजस्थानी लोकगीत।

0: तो किसान भाई देखो, राजस्थानी लोकगीत होने और आप ही बात करिए कि जो कृषि उत्पादन की जो है ब्रांडिंग किस तरह कर सका। देखो आप ही किसान उत्पादक स्वयं संगठन है, मंडी उत्पादन की ब्रांडिंग करना चाहे तो निम्न चरण रो पालन करना है। सबसे पहला है उत्पादों चयन और ग्रेडिंग। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि फसल जो ब्रांडिंग है वह एक जैसी नहीं हुए। सबसे पहले आप देखा कि अच्छा उत्पादन चुनना है, मंडी छटाई करनी है ताकि केवल एक समान और उत्तम क्वालिटी का माल और ब्रांड बन जाए सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो, एक आकर्षक नाम भी देणो है और लोगो भी लगाणो है, जेने में नाम असो वेणो चावे जैसे कि छोटो है, याद रखवा में आसानी वे, और खेती और या शुद्धता जुड़े तक हुए, जैसे कि कणी भी नाम है दीदो आप, वणी कणी भी फॉर्म रो नाम दीदो, तो एक अच्छो सो लोगो भी वेणो चावे ताकि आपकी पहचान आसानी बनी सके।
0: बिल्कुल साहब। देखो सुरक्षित और आकर्षक पैकेजिंग होनी चाहिए। पैकेजिंग में आप ही देखा कि उत्पादन ने पे करवानी बल्कि ग्राहक ने आकर्षित करवा होती होनी चाहिए। इको फ्रेंडली पैकेजिंग होनी चाहिए। आजकल देखो कि जूट रहा बैग गया है, कपड़ा की थैली आई गई है,

0: रिसाइकेबल पाउच आई गया है, तो ग्राहक ने एकदम पसंद आवे और वो चीज़ खरीद जाए। और पैकिंग ऐसी होनी चाहिए, हमें देखो उत्पाद की नमी भी होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए, तो व्यक्ति आकर्षक तरीकों में देखे और ख़रीदे और आपने जो उचित दाम है वो मिल जाए ऐसा।
1: बिल्कुल सा, और लाल लाल लेबलिंग है और जरूरी जो सरकारी प्रमाण पत्र है वे भी वेणा चावे। पैकेट रे पाछे देखो लेबल पे जानकारी अवश्य वेणी चावे जो कि भरोसा ने जगावे है। खाद्य उत्पाद रे वास्ते देखो बहुत जरूरी है कि वणी पे ये चीज़ा वेणी चावे। लाल लाल लाइसेंस भी वेणो चावे, वणी पे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी वेणो चावे। अगर आप उत्पाद जैविक है तो जैविक भारत है या PGC इंडिया रो लोगो वेणो चावे। पोषण संबंधी जानकारी भी वेणी चावे, जणी रे मैंने प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट आदि री मात्रा भी वणी रे मैंने वेणी चावे साहब।
0: हाँ, क्या और मतलब है कि ग्राहक हर चीज़ संतुष्ट हो जाए,
1: हाँ
0: वरना
1: साहब
0: यूँ नहीं लगे कि आज मुझे चीज़ ले रही हूँ या ख़राब है कहीं नहीं है, जो मार्क है वो मार्क लगे तो को है। मार्केटिंग बिक्री के माध्यम में आप ही देखा कि शुरुआत में जो स्थानीय प्रदर्शन है लगे, कतरी बार खेती बाड़ी रहा जो मेला लगे, तो वटे जिन किसान ये चीज़ें रख देवे, तो देखो हर जगह व्यक्ति आवे, हर जगह देखे कि यार चीज़ अच्छी लग रही है तो भी ने खरीदे। और एक व्यक्ति अगर एक चीज़ ने ले जाएगा वो 10 आदमी ने जागरूक करेगा,
1: बिल्कुल
0: और उन्हें
1: साहब,
0: आपने देखा कि दाम जो है वो व्यवस्थित राखणो, ज़्यादा उच्च दाम है मनो भी आपने सामान जो है वो नहीं बिके, बिल्कुल कम दाम वे और वस्तु अच्छी नहीं वे तो भी नहीं बिके। तो देखो कि जो व्यक्ति खरीद रहे हो वंडे अनुसार अगर दाम वेगा तो निश्चित रूप आपने लाभ वेगा। और देखो कि ऐसा सा बहुत सारा उदाहरण है जन में आप ही देखा कि उत्पाद किसान ऐसा नेटवर्क बनावे, अच्छी ब्रांडिंग ने दाना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बने सके ऐसा। तो देखो कार्यक्रम में तो आप ही बात की दी है कि कई तरह आप ब्रांड बने उत्पाद ने आप बेच सको और अच्छा लाभ कमा सको। तो देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और मनोरंजन करावा होना हुए राजस्थानी लोकगीत।

0: किसान भाई देखो कार्यक्रम में राजस्थानी लोकगीत भी ढूंढ रहा और लाल लाल संदेश भी ढूंढ रहा और देखो बढ़िया जानकारी भी प्रदान कर रहा। और आप ही देखा कि अबार जो देखो मौसम में परिवर्तन नहीं रहा है,
1: हाँ
0: और आप
1: साहब,
0: ही देखा कि कटे तो तेज़ धूप पड़ रही है और कटे देखो हल्की हल्की हवा चल रही है और कटे बारिश की बौछार भी हो रही है।
1: बिल्कुल
0: और
1: साहब,
0: जटा आप ही देखा कि बारिश की बौछार भी हुए और देखो कि जल भराव की स्थिति आप ही देखा। और जल भराव एक ऐसी समस्या है कि देखो खेती बाड़ी में अगर किन्हीं खेत में पानी भर जाए तो देखा हमने पूरी पूरी फसल जो है वह चौपट हो जाए, नष्ट हो जाए और जो उचित दाम है वो नहीं मिल पावे। तो
1: बिल्कुल
0: देखो अवारणी समय में आप ही देखा कि जल भराव वो आपकी फसल की सुरक्षा किस तरह कर सका सा।
1: देखो सर, जल भराव जो है फसल वास्ते एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यदि खेत रे महीने लंबा टाइम तक देखो पानी जमवा लगी जावे, तो जो मिट्टी रे जो छेद रे है वहीं रे महीने हवा जैसे कि ऑक्सीजन री जगह पानी भर जावे, तो आणियों कही है कि जो पौधा री जड़ा है वे सांस नहीं ले पावे, तो जो फसल है वह धीरे धीरे पीली वे ने खराब होवा लगी जावे।
0: बिल्कुल सर, आप ही देखा कि घर है आपने जो गमला भी है या खेती बाड़ी रो काम कर रहा है पेड़ पौधा है वन में आप ही देखांगा कि एक दान पानी दे दो दूसरी दान पानी दे दो तो ज़्यादा पानी देना भी देखो फसल नुकसान करे। कतरी बार देखा कि मेन जो आप की रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाए और वनडे कारण की पौधा मेन मेन सड़ जावे और कतरी बार देखा कि पौधा मुरझे नीचे गिर जावे। तो देखो जल भराव चीज़ों आपने वचनों है तो आपने ध्यान रखना है कि खेत में पानी भरे तो ना के करना है। तो देखो आपने ध्यान रखना है कि जो निकास नाली है वो बनाना है क्योंकि खेत का सब निचला हिस्सा में आप देखा कि झुकाव देता तक कच्ची नालियाँ बनानी ताकि जमा तक का पानी वो निकल जावे। कतरी बार देखा कि पानी है नहीं निकल रही है तो आप ये कह रहे हैं कि पंप सेट लगेगा। तो वन में कही है कि अगर प्राकृतिक ढलान नहीं हुए पानी रुक्यो नहीं हुए तो डीजल या इलेक्ट्रिक पंप की मदद तो पानी ने खेता में निकालने नज़दीक नहर या नाला में डाल देना तो काफ़ी हद तक देखो कि पानी की जो समस्या है वह दूर हो जाएगा और खेत पाचो धूप आएगा सूख जाएगा तो अपने काम में आ जाएगा सा।
1: बिल्कुल सा, और देखो लाल लाल जो पोषक तत्व है वणीरो भी छिड़काव करो कि देखो जल भराव रे टाइम पे जो है जड़ा पोषक तत्व जो है सोखवा पे बंद कर देवे, तो वणियों कहीं जो पानी निकलने बाद में देखो तुरंत जो है 1.5 यूरिया अपने कहीं करना है कि NPK लेनो है, और अंतराल रे महीने देखो वणी पे पत्ता पे छिड़काव करना है ताकि जो पौधा जो है देखो तुरंत ताकत मिल जावे और जो पौधा है भी देखो खराब भी नहीं वेगा सा।
0: बिल्कुल सर, और देखो दीर्घ

0: को सृजनात्मक की बात करा तो यो तो आप समय की तो कम समय बात है, लेकिन जेटा अधिक समय की बात करा तो देखो अधिक समय में खेती बाड़ी चलानी है, व्यवस्थित काम भी करना है, तो जेटा आप देखा कि एक लैंड लेवलिंग है जिन्हें आप कह सका कि खेता ने समतलीकरण करना है। तो आप ये कह रहा है कि लेंजर लेड लेवर की मदद तू खेत ने पूरी तरह समतल बनाना, और मैं भी देखना है कि पानी कहीं भी जगह जमा नहीं हुए, अगर पूरा खेत में समान रूप फैले तो वो पानी धीरे धीरे के सूख जावे। आप ये खुद भी देखा कि एक जगह पानी भरे हुएगा तो मिट्टी ने ख़राब कर देगा, लेकिन पानी रो बहाव क्षेत्र सब तरफ रहेगा तो वो धीरे धीरे पानी जल्दी भी सूख जाएगा और मिट्टी पाची वसी उपजाऊपन वसी वही जाएगा। तो आप यूँ कर सका कि मेड़बंदी और जल निकासी ग्रिड में आपने कहीं ध्यान रख सका सा।
1: देखो सा, खेत रे चारी तरफ जो है मजबूत मेड़ बनावनी है और पानी की जो सुचारू निकासी रे वास्ते एक परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि निकासी ग्रिड तैयार रखना है ताकि जो पानी है वटे जमा नहीं वेगा और जो पेड़ पौधा है वणी में पानी जमा नहीं है तो भी खराब भी नहीं वेगा।
0: बिल्कुल सर, और आप बात कीजिए जो परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम है, तो देखो पहला जो लोग बाग है तो आप देखो कि खेत रे अड़े बड़े साइड पे सा खाड़ा छोड़ देता है।
1: हाँ सर,
0: वे यूँ छोड़ता है कि कभी भी वर्कारो पानी आएगा तो वो खेत में पड़ियो नहीं रहेगा, वो पानी बाहर जो नहर है नाला है अंडे बड़े निकल जाएगा तो खेत अपनों जो है सुरक्षित रहेगा। कई बार आप ये देखा कि पानी रो बहाव उतरो तेज वे कि खेत जो गए है अपने लाल लारे मिट्टी ने बही लेन चलो जाए, तो आपने देखो ना कि मिट्टी ने बचानी है तो आप ये करेंगे साइड पे मेड़ बने देगा, तो वहीं कही है कि मिट्टी ज़्यादा है वह बाणे नहीं निकल पाएगा तो पानी तो निकल जाएगा और मिट्टी सुरक्षित हो जाएगा सर।
1: तो देखो सर, आधुनिक बुवाई तकनीका भी अपने अपने ही ने अणी जो जल भराव है वणी ने आपा कम कर सका। पारंपरिक तरीका रे बजाय आज जो तकनीक ने अपने ही ने जल भराव रे जो नुकसान है वो काफ़ी हद तक देखो कम करियो। जैसे कि झड़ी रे महीने वे बेड प्लांटिंग अणी में फसल ने उठी थकी जी क्यारिया वे वणी पे बोयो जावे है और नालिया रे जरे सिंचाई करी जावे। भारी बारिश में पानी नालिया में रही जावे तो कई पौधा री जो जड़ा है वे सुरक्षित उठी थकी मिट्टी में रही जावे है।
0: बिल्कुल सा, और आप ही देखा कि कतरी बार जो है वो देखो कि रींज एंड फेरो विधि है, और मैं देखा कि मेड़ और नाली बनी जावे, फसल री मेड़ ऊपर लगाया जाए जो अत्यधिक पानी नाली में चलो जाए और जड़ा सड़वाऊँ बच जाए। लारे आप ही देखा कि मिट्टी रो प्रबंधन और फसल रो चयन भी करा, तो मिट्टी में देखो कि प्रचुर मात्रा में गोबर ही खाद है, कंपोस्ट है, केंचुआ खाद है या मिलानी, तो मिट्टी में जल सोखोरी क्षमता में भी सुधार आवे सा।
1: और देखो लारे लारे हरी खाद रो भी उपयोग करना है। साल रे महीने एक बार ढेचा है सनई है जैसी हरी खाद ने उगाई ने मिट्टी में पलटवाऊँ, मिट्टी री जो संरचना है खुली और हवादार वणी राखनी है। लाल लाल सहनशील जी किस्मा रो चयन करनो है। अगर आप खेत क्षेत्र अशा क्षेत्र में है जटे हर साल पानी भरियो थको रेवे तो जल भराव रे कारण सहन करवा वाली जी फसला है या वणारी जो विशेष किस्म रो चुनाव है वणा ने करनो है जैसे कि धान री जो जल सहनशील किस्म है वणा ने चुननी है अपने।
0: बिल्कुल सा, तो देखो किसान भैया देखो या तो बात की थी कि कहीं तरह जल भराव क्षमता ने हटाओ और कहीं तरह अपनी खेती बाड़ी में अच्छो काम करो सा, और देखो कि कार्यक्रम में मनोरंजन भी बनो चाहे तो होना ही राजस्थानी लोग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और घर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: हे दरख्तों की शायरी जंगल, धूप छाया की डायरी जंगल, बस्तियों से निकल के तो देखो जिंदगी की है ताजगी जंगल। श्रोताओं, अगला गीत बॉबी फिल्म से लता मंगेशकर शैलेंद्र की आवाजें हैं, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: बाहर से

हम तुम एक जंगल से गुजरें और शेर आ जाए। गूंजती है ये वादियाँ जिससे पर्वतों की है बांसुरी जंगल। दिल से पूछो ज़रा परिंदों के खुद फरिश्ता है खुद परी जंगल। नाम वर्षा बदल भी जाए तो यूँ न बदलेगा ये कभी जंगल। सोचो ज़रा, जंगल हो आधी रात हो तो क्या होगा, लगने लगेगा ना डर।

जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के साथ। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दीवाना फिल्म से। आवाजें हैं अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की, तर्ज नदीम श्रवण की।

जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। श्रोताओं, अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं घरवाली बाहर वाली फिल्म से। उदित नारायण और अनुराधा श्रीराम की आवाजें हैं, धुन अनु मलिक की।

0: समिति मामले की जांच करेगी।
1: घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
3: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
7: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दास गुप्त ने आज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का

0: राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सीआईएसएफ के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक

0: नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत में राग श्री। कलाकार हैं M. वेंकटेश कुमार।

राग श्री हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन गंभीर और आदरणीय रागों में से एक। यह संध्याकालीन संधि प्रकाश राग है जिसे मुख्य रूप से सूर्यास्त के समय गाया जाता है। ये राग आध्यात्मिक और भावुक मन की स्थिति को दर्शाने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में रागश्री। कलाकार थे एम वेंकटेश कुमार। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। आप सुनते हैं कार्यक्रम खेल जगत में जगदीश चंद्र तेली, पेरा स्विमर से मनोज कुमार अम्बेश की बातचीत हमारे जयपुर केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

हम जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय रात के 10 बज रहे हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम खेल जगत का।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस अंक में सबसे पहले आप सुनेंगे
1: पैरा स्विमर जगदीश तेली से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र उदयपुर का अंशदान है।
2: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि पानी हर बाधा को अपने रास्ते से काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने ना सिर्फ पानी की लहरों को बल्कि जीवन में आई हुई सभी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए सफलता के नए आयाम कायम किए हैं। आइए स्वागत करते हैं जगदीश तेली जी का। जगदीश जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी नमस्कार सर।
2: जगदीश जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
3: सर, मेरा नाम जगदीश तेली है, मैं राजसमंद का निवासी हूँ और पैरा में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ।
2: जैसे कहा, आप पैरा स्विमर हो
3: जी,
2: तो ये जो आपके साथ जो घटना हुई है इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, ये कैसे हुई और किस उम्र में हुई?
3: सर, ये घटना मैं जब 7 साल का था तब हुई है और उस समय मतलब मुझे भी नहीं पता था, इतना नॉलेज तो छोटा था मैं उस समय, लेकिन ये 7 साल की उम्र मेरे साथ घटना हुई थी।
2: अचानक से हो गई थी ये?
3: अचानक मतलब ऐसे मेरे माता पिता बताते हैं कि अचानक मतलब पैर जो है पैरालिसिस हो गया, मैं चल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो वापस थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था।
2: जैसे आपने कहा आपको 7 साल की उम्र में ये हुआ, तो उसके पहले तो आप एक नॉर्मल किड थे
3: जी,
2: लेकिन जब ये घटना हुई तो फिर आप
3: एक
2: पैरल वो हो गए, आप डिसेबल।
3: हाँ,
2: वो
3: जो, जो चलने में भी सहारे की जरूरत। हाँ, होती थी उस समय
2: जी। तो जो समाज है उसका रवैया आपके लिए बिल्कुल बदल गया या वही रहा?
3: नहीं, बहुत नेगेटिव था सर।
2: जैसे कि?
3: जैसे हीन भावना से या फिर कोई बोल देना, जैसे डायरेक्ट ही बोल देते थे, मतलब एक ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन अब ऐसे शब्द है कि जैसे लंगड़ा है।

0: ऐसे बोल
1: जी
0: दिया
1: जी
0: इस तरह की सुनने को मिलता था। अब कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा,
1: मतलब वो समझते थे कि आप बोझ बन जाओगे एक
0: जी,
1: तरह
0: बोझ
1: से।
0: बनेगा जी।
1: और आपके माँ बाप क्या सोचते थे?
0: नहीं, उनका मतलब बहुत पॉजिटिव था भाई, जो भी है वैसा है, क्योंकि माँ का एक मतलब कैसा भी बच्चा हो,
1: हाँ,
0: माँ बाप का तो लाडला होता है
1: जी
0: जी। तो वो उसमें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उनके सपोर्ट से।
1: आपको कब ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करना है, खासकर स्विमिंग को लेकर?
0: ये सर एक मतलब एक खेल खेल में हुआ है। मैं जब ऐसे स्विमिंग खाली सीखने जा रहा था, और जब मैंने भक्ति शर्मा का देखा, उदयपुरी जलपुरी नाम से फेमस है
1: जी,
0: और उनकी माता जी के अंदर भी मैंने स्विमिंग सीखी थी बाद में, तो उनका मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें वो इंग्लिश चैनल पार किया था 2016 में। तब से मेरे भी मन में आया कि लड़की होके कर सकती है, तो मैं खाली राजमंदिर क्यों, मैंने नहीं सोचा कि मैं राजमंदिर में भी पार करूँ। तो मैंने ऐसे सोचा था, और किसी को बोला मैंने भाई मैंने ऐसे राजमंदिर पार करनी, तो मुझे बोला कि नहीं नहीं तू तो दिव्यांग नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने दिमाग से आने की अब तो करना ही है, मतलब एकदम तरह का मैंने पॉजिटिव लिया कि नहीं नहीं अब तो मुझे करना है। उन्होंने मना किया इसका मतलब, तो क्योंकि मुझे स्विमिंग आ गई थी और मुझे पता है कि मैं डूबूंगा तो नहीं, कम से कम कैसा भी हो जाए, मौसम कैसा हो जाए भले, या फिर कुछ भी हो जाए।
1: स्विमिंग में सबसे जरूरी होती है कि आपके हाथों के साथ साथ पैरों का भी इस्तेमाल हो
0: जी,
1: ठीक है। तो आपको शुरुआती दौर में किन बाधाओं का सामना करना पड़ा?
0: सर एक भगवान मतलब एक लोग कहते हैं कि भगवान कुछ लेता है तो देता भी है, तो मेरे में एक चीज थी कि मेरे जब कोच भी बोलते सब कि मेरे जो पैर में जो पोलियो है उसकी वजह, मतलब पता नहीं मतलब, लेकिन मेरा हाथ में जो हाथ है आम स्विमर जो होते हैं उनसे थोड़े लंबे है।
1: अच्छा।
0: तो मेरे वो मुझे फायदा मिला उसका,
1: उस चीज का फायदा मिला
0: जी।
1: और फिर जब आपने शुरुआत की तो फिर कहाँ से, नॉर्मल स्विमिंग से ही की कि जैसे आप गांव में तो लोग बात तालाबों से शुरुआत करते हैं?
0: तालाबों से सर, वही नॉर्मल स्विमिंग जो देसी गांव में होती है, क्योंकि मुझे फ्री स्टाइल का स्ट्रोक भी उदयपुर में आया तब पता चला कि भाई एक्यूरेट स्विमिंग ये भी होती है।
1: अच्छा। और फिर उसके बाद फिर आप कैसे कैसे धीरे धीरे अप्रोच करते गए?
0: मैं फर्स्ट टाइम सर यहाँ यूपी में एक रिवर स्विमिंग थी नेशनल इवेंट, उसमें गया और ब्रॉन्ज मेडल लगा। तो एक तरह का होता है जैसे एक मेडल लग गया तो आपके पंख लग गए हो।
1: हाँ बिल्कुल
0: जी। तो उस टाइप का मेरा वहाँ हुआ। फिर मेरा मतलब एक अब खुद में भी सर पॉजिटिव सोच ये सब जागृत हो जाती है कि मेडल लग गया तो मतलब आपको फिर धीरे धीरे सब रास्ते भी खुल जाते हैं, कहाँ से कहाँ आगे क्या बढ़ना है, आगे के जो भी स्ट्रोक है कैसे सीखने हैं ये चीजें सब।
1: एज अ पैरा स्विमर और नॉर्मल स्विमर जब सीखते हैं तो इन दोनों में ट्रेनिंग को लेके क्या अलग अलग रवैया रहता है
0: बहुत,
1: या फिर मतलब टेक्निक वगैरह कुछ अलग रहती है दोनों में?
0: नहीं, तकनीक तो सर सेम होती है, लेकिन समझाने का तरीका जो होता है
1: जी,
0: जिसे आम स्विमर है उनको कोच समझा सकता है उनके तरीके से, क्योंकि उनको पता है वो। आज हमें पूरे भारत में कहीं बहुत कम देखने को मिलते हैं दिव्यांग के लिए स्पेशल कोई कोच हो।
1: बिल्कुल।
0: तो अब कोच दिव्यांग अगर के लिए दिव्यांग के लिए होगा तो वो उसकी तरफ से समझा सकता है, क्योंकि उसने वो फेस किया है। अब जैसे मैं हूँ, मैं दिव्यांग हूँ और मेरे जो स्टूडेंट है, मैं मुझे पता है ये अगर पैर नहीं है तो क्या तरीका अपनाएंगे तो जाके वो मेडल लाएगा। तो उस तरीके से वो अब धीरे धीरे होने लगा है। पहले ये नहीं था कि दिव्यांग के लिए वो समझाने वाला हो। जैसे मुझे बहुत सारी जगह ऐसे भी थे कि नॉर्मल स्विमर जो स्विमर स्विमिंग कर रहे हैं उससे अलग रखा जाता है, भाई ये तू अलग यहाँ पे कर ले। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई कि मैं उनके पास में, हालांकि उनके साथ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पास में करके मैं उनके तरह के कॉपी करने की कोशिश करता था, तो उससे मेरा इंप्रूवमेंट हुआ ज्यादा।
1: तो ये स्विमिंग करने के लिए कुछ जैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है
0: जी, जी।
1: पैरा स्विमर्स के लिए कि वही इक्विपमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल स्विमर्स के लिए रहते हैं?
0: पैरा में कुछ अब आने लगे हैं, पहले नहीं होते थे इतने,
1: पहले नहीं होते थे
0: जी।
1: अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है,
0: अब अपग्रेड होती जा रही है, जैसे अभी डाइविंग के लिए भी आ रहे हैं, सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीजें चेंज हुई है अब।
1: अच्छा, जब आपने अपना पहला मेडल जीता था, जैसे कि आपने बताया ब्रॉन्ज मेडल था, है ना, उसके बाद जो समाज का रवैया था वो कितना चेंज हुआ आपके प्रति?
0: जो लोग सर मुझे बोलते थे पहले, जैसे मैंने राजमंदिर पार करी उस समय मुझे जो बोलते थे भाई तू नहीं कर पाएगा ऐसा वैसा, वही लोग जैसे माला लेके आए फिर वही लोग तारीफ करते थे, तो वो फिर एक अलग ही खुशी देता था।
1: आपने इंटरनेशनल भी कम्पीट किया है?
0: जी।
1: तो जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें आप कंपटीशन में जा रहे थे, उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? कभी आपने सोचा था कि मैं एज अ पैरा स्विमर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाऊंगा?
0: सर सोचा तो नहीं था, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो इतना बड़ा सोचना मेरे लिए बहुत बड़े एक सपने की तरह था
1: जी।
0: लेकिन जब समाज का सपोर्ट, अपने घर वालों का सपोर्ट, सबका जो कोच का जो रवैया है या भी उनका जो तरीका है अपने बताने का, फेस करने का, उससे सर मुझे बहुत मतलब फायदा हुआ है। और समाज जब एक होता है ना, जब मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया उसके बाद से मेरा लाइफ एक तरह का जैसे चेंज होने लगी थी, तो उससे

0: मतलब अब जब इंटरनेशनल जा रहे हो आप, तो उसमें तो होता ही सर, एक प्रेशर तो होता है हालांकि वो अलग खेलने का, लेकिन एक खुशी भी होती है कि चलो एक गांव से निकल के यहां तक पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
1: जी बिल्कुल, आपकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी चीज है इंग्लिश चैनल और कैटालिना चैनल की,
0: जी
1: इन दोनों चैनलों के बारे में आपके मन में सबसे पहले विचार क्या आया
0: सर, मेरा
1: और कहां
0: सपना
1: से आया, मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं इन दोनों चैनलों में उतरूं और इनको पार करूं?
0: मैं सर है मतलब जब स्विमिंग की मेरी शुरुआत हुई थी मेन, तब मैं निकला इसलिए था कि इंग्लिश चैनल करना। 2009 में 10 में हमारा प्लान था कि इंग्लिश
1: अच्छा,
0: चैनल
1: आपने
0: करना।
1: उनसे जो उदयपुर की जो
0: जी
1: भक्ति
0: जी
1: जी थी,
0: हाँ,
1: हाँ उनसे प्रेरणा लेके।
0: उनसे प्रेरणा ली कि भाई मुझे भी इंग्लिश चैनल करना है।
1: हाँ
0: लेकिन क्या हुआ कि ऐसे जैसे तो सर फंड की भी जरूरत होती है।
1: जी
0: अब मैं
1: बिल्कुल,
0: जैसे मैंने पहले बताया कि परिवार में किसान परिवार से हूं, तो इतना वहां से तो होना नहीं, मतलब बाहर तक जाना मतलब सोचने से भी, और ट्रेनिंग के लिए भी नहीं हो रहा तो वहां तो क्या होगा सर। तो
1: बिल्कुल।
0: फिर पैसे नहीं हुए थे, तो मतलब 2010 तक मेरे बजट नहीं हुआ था, तो फिर नहीं कर पाया मैं। लेकिन जब मेरे स्टेट लेवल पे नेशनल पे मेडल लगने शुरू हो गए और लोगों का जैसे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, तो अलग अलग बहुत सारी कंपनियों भी हमें सपोर्ट किया। जैसे हमारे केलवा से भी कुछ संस्थाएं हैं, राजसमंद से, उदयपुर से हैं, मुंबई से हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था, और उससे हम इंग्लिश चैनल करके आए। और इंग्लिश चैनल में हमारा सर एक पैरा ग्रुप बना, जैसे हम नेशनल लेवल पर मिलते रहते खिलाड़ी लोग, तो उसमें हमारा एक ग्रुप बना, उसमें बोला सबको करना था इंग्लिश चैनल। तो हमने वहीं से एक प्लान करके 2018 में प्लान किया कि अब करना है। तो फिर हम रोहन, हमारे जो कोच थे रोहन मोरे जो पुणे के हैं, उनके दिशा निर्देशन में हमने ट्रेनिंग करी वहाँ, और फिर 2018 में करके आए हम।
1: तो जब आप इंग्लिश चैनल पार कर रहे थे, तो उस समय आपको क्या रियलाइज हुआ, कितनी बड़ी चुनौती है और ये उस समय क्या-क्या बाधाएं आईं?
0: सर एक तो इंग्लिश चैनल अपन बोलते हैं यहाँ, यहाँ खाली खाली बोलना देखना मतलब करना ऐसा सोचना आसान है, लेकिन जब हम वहाँ हम गए ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ जो लगा जैसे एक हाथ पैर सुन्न हो जाना,
1: बिल्कुल,
0: ये चीजें हमारी
1: पानी का
0: जो,
1: बहाव भी ज्यादा होता
0: हाँ,
1: है।
0: तो दिमाग में कभी भी ऐसा हमारे भी दिमाग में आया था कि यार इसकी जगह कोई दूसरा गेम चूज करते तो अच्छा था, क्योंकि इतना ठंडा पानी और
1: ठंडा
0: खाली
1: पानी,
0: यहाँ मतलब दूसरा गेम करते तो ठंड से बच जाते हैं, लेकिन वहाँ चलो गे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग करी वहीं पे, तो हम उसी लेवल मतलब जहाँ पे हम देखते थे वहाँ के लोग एकदम ओपन, जैसे हम कट में घूम रहे हैं, कट कपड़े पहन के, और हम ऐसे जो अपने सर्दियों में पहनते हैं वो कपड़े पहन के घूम रहे थे। तो वहाँ पे फिर लगा कि सर ये मतलब इसके तो ये अब हम कैसे कर पाएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम 1.5 महीना वहाँ प्रैक्टिस करी, उसके बाद में हमने उसी उनकी तरह आराम से कर लिया जैसे।
1: और फिर उसके बाद कैटेलिना चैनल का नंबर आया।
0: जी
1: जो चुनौतियां इंग्लिश चैनल के समय थी, क्या वही चुनौतियां कैटेलिना चैनल के समय थी कि वहां पे
0: नहीं,
1: कुछ विपरीत वो माहौल था?
0: वो विपरीत माहौल था वहाँ, इंग्लिश चैनल बहुत टफ है
1: हाँ
0: और केरला चैनल थोड़ा सा लाइट, मतलब थोड़ा सा मतलब आप एकदम इजी भी नहीं मान सकते उसको, लेकिन थोड़ा लाइट है, जो ठंडे जो कम ठंडा है जैसे, और चैलेंजिंग नहीं। इंग्लिश चैनल में बहुत करंट आते हैं, जैसे करंट वेव आते हैं अंदर के जो आपको पीछे खींचते हैं, तो केरला चैनल में इतना नहीं था। और प्लान था हमारा कि जैसे इंग्लिश चैनल करना फिर केरला चैनल करना, 7C का टारगेट था, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए थे।
1: अच्छा सर, आप एक ट्रेनर भी हैं,
0: जी
1: आपके पास जब कोई बच्चा स्विमिंग के लिए आता है, खासकर पैरा स्विमर, उसमें आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं कि वो पानी में उतर के स्विमिंग कर ही पाएगा?
0: नहीं, उनको विश्वास में लेते सर, प्यार से भी बच्चे मतलब कर लेते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते हैं हालांकि, लेकिन
1: अच्छा
0: पहले जो होता है प्यार से समझाना जैसे करना ना कराना वो कर लेते हैं, हालांकि ज्यादातर ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं होती है ना। और पैरा स्विमर तो सर वैसे ही वो आते हैं, मतलब ऐसे मैंने अब तक जो सीखा है जितने भी पैरा हैं, मुझे जो नॉर्मल लोगों को सिखाना और उनको सिखाना बहुत आसान लगा, मतलब पैरा को सिखाना मुझे बहुत आसान लगा है
1: ऐसा
0: अब।
1: क्यों?
0: पता नहीं ये अलग ही उनके अंदर एक सर अलग ही होता है, वो जुनून होता है थोड़ा सा एक, क्योंकि
1: हाँ,
0: वहां तक आना
1: कुछ
0: मुझे,
1: साबित करने का जुनून रहता है
0: हाँ
1: किसी
0: बस
1: को।
0: साबित करने का जुनून होता है, बाकी होता है नॉर्मल जो भी आते हैं सीखेंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाएंगे।
1: आप
0: लेकिन
1: पिछले कितने सालों से सिखा रहे हैं?
0: मैं 4 साल हो गए सर सिखाते
1: तो
0: सिखाते।
1: इन 4 सालों में आपका ऐसा कोई शिष्य जिसने बहुत ज्यादा मतलब काफी उपलब्धि हासिल कर ली हो?
0: एक है हमारा विष्णु कुमार बेरवा, जो अभी हाल ही में वो एक गोल्ड 2 सिल्वर लेके आया है बेंगलोर में, पैरा जूनियर पैरा में।
1: आपके नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा उपलब्धि उन्होंने
0: जी
1: हासिल की
0: जी
1: है।
0: हाँ,
1: अच्छा जगदीश जी, जाते जाते हमारे जो श्रोता है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हमारा उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को अपने बचाव इतना स्विमिंग आनी चाहिए। अगर आप हो सके कंपटीशन की तैयारी करते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बचाव जितने तो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, और माता पिता को भी अपने बच्चों को अपने बचाव जितने सिखानी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, ये थे श्री जगदीश तेली जी। आपने अपनी कहानी से ये बताया, ये साबित किया कि शारीरिक बाधाएं सिर्फ नाम की होती है, अगर आपका

0: मानसिक ताकत हो और आपके पास कर जाने का जुनून हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, भले वो इंग्लिश चैनल हो या कैटेलियन चैनल हो। और हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में सातों के सातों चैनल पार करें
1: जी, धन्यवाद।
0: हमारे उदयपुर का, राजसमंद का और हमारे देश का नाम रोशन करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे पैरा स्विमर जगदीश तेली से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र उदयपुर का अंशदान था। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रखर मदान से की गई बातचीत।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मिलवा रहे हैं जिसका खेल बहुत ही तेज गति का है और उसमें शॉट मारने के लिए आपको इतना कम समय मिलता है जैसे सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप उस खेल के शॉट को कहां और कैसे मारे ताकि आप अधिक से अधिक अपने पॉइंट बना सकें। जी हां, उस खेल का नाम है टेबल टेनिस और टेबल टेनिस के एक खिलाड़ी के तौर पर आज हमारे साथ हैं श्री प्रखर मदान। प्रखर मदान, नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: प्रखर, टेबल टेनिस की बात की और जो जैसा कि मैंने कहा कि इतना कम समय मिलता है, सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम जब आपको शॉट मारना पड़ता है, ये बात सच है?
4: हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आपको आधा सेकंड से एक सेकंड रहता है, उसमें आपको पूरा डिसाइड करना होता है आपके पास बॉल स्पिन कौन सी आ रही है, कैसे कितनी स्पीड में बॉल आ रही है, सामने वाला प्लेयर कहाँ पर खड़ा है, आपको वो बॉल कहाँ पर प्लेस करनी है, ये सब चीजें आपको आधे से एक सेकंड में डिसाइड करके ही सब कुछ आपका फैसला लेके आपको उधर बॉल प्लेस करनी होती है।
3: इतनी तेज गति का खेल है ये जिसमें इतना कम समय हमको शॉट मारने के लिए सोचने का समय मिलता है कि हम कैसे अपने पॉइंट्स को बचाएं और अधिक से अधिक अपने पॉइंट बनाएं। टेबल टेनिस के खेल की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ?
4: तो ये स्टार्ट हुआ था जब मैं करीब 10 साल के आसपास का था, जब मैं फिफ्थ क्लास में था
3: जी।
4: तो मेरे पापा ने मुझे इसके लिए इसमें लगाया है, मतलब मेरे पापा बहुत खेलते थे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम। तो इसका शुरुआत हुआ, मेरे पापा ने एक टूर्नामेंट जीता था तो वो बहुत सारे प्राइजेस लेके आए थे घर पे एक बार। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मैंने ऐसे ही पापा से सीखना चालू किया मेरे घर की डाइनिंग टेबल पे।
3: अच्छा।
4: तो मेरे पापा हमेशा ऑफिस से आते थे तो मैं डाइनिंग टेबल हमेशा रेडी करके सेट करके उस पर नेट वेट लगा के मैं हमेशा तैयार रहता था और पूरा इंतजार करता था उनका। और फिर मेरे पापा ने मेरे को खेलना सिखाया उसका। तो धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, हम लोग खेले ऐसा 2-3 महीने, फिर मैं धीरे धीरे मेरे पापा को टक्कर देने लगा।
3: अच्छा।
4: पापा के साथ अच्छा जीतने लगा, मतलब वॉल प्रैक्टिस करता था मैं पापा, फिर घर आते थे तो खेलता था उनके साथ। तो फिर ऐसे ऐसे मेरा गेम काफी इंप्रूव हुआ और उसके बाद फिर ये देख के मैंने स्कूल में भी खेलना चालू करा। तो स्कूल में फिर मेरा धीरे धीरे हाउस टीम में सिलेक्शन हुआ। फिर ये ऐसा ऐसा करके मैंने फिर शाम को मैं आके डाइनिंग टेबल पे फिर मेरे को छोटी लगने लगी। और फिर मेरे पापा ने मेरे को, जो मैं तब अलवर में रहता था
3: जी,
4: तो अलवर में स्टेडियम था एक, वहां पे अच्छे प्लेयर खेलते थे। तो धीरे धीरे मैं अपनी मम्मा के साथ जाता था वहां पे शाम को खेलने। तो वहां पे मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर ऐसा करीब ये चला होगा 1 से 2 साल, फिर मैं अपनी स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ। तो तब मैं सबसे छोटा प्लेयर था जो स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ था 7th क्लास में। फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट खेला, तो 8th स्टैंडर्ड की बात है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था जिसमें मेरा पहली बार ही मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था और पहली बार में मेरा स्टेट में सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसे ही चला। फिर 9th स्टैंडर्ड में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला और 9th स्टैंडर्ड में मैं डिस्ट्रिक्ट में एज अ, मैंने 8th स्टैंडर्ड में मैं 5th क्वालिफाई किया था सिर्फ, बाकी 9th स्टैंडर्ड में मैंने 2nd स्थान प्राप्त किया पूरे जयपुर में
3: जी।
4: तो उससे मेरा फिर वापस स्टेट हुआ और फिर उसी साल मैंने पूरे ऑल ओवर राजस्थान में 4th रैंक हासिल करी थी एज अ स्टेट लेवल पे।
3: जैसा आप बता रहे हैं कि 7th से आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना शुरू किया और लगातार पहली दूसरी पोजिशन के आसपास ही आप स्टैंड करते रहे और पापा ने आपको ये को देखकर आपको इसका शौक लगा। अभी खेलते खेलते आपको काफी अरसा हो गया है और स्टेट के बाद में क्या कभी नेशनल टूर्नामेंट में किसी में जाने का मौका मिला जहां पर दूसरे स्टेट के प्लेयर्स भी आए हों?
4: स्टेट के बाद हमारा ऐसा होता है, जब मैं 4th रैंक आई थी मेरी ऑल ओवर राजस्थान में, मतलब पूरे स्टेट में, तब हमारा नेशनल कैंप लगता है जिसमें 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो एक रहता है आपका क्वार्टर फाइनल में जो 8 लोग आते हैं, उसके बाद 2 बच्चे वो उनकी ओवरऑल रैंकिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के 2 लोग जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहते हैं टेबल टेनिस के, वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो उसका 10 लोग का हमारा नेशनल कैंप हुआ था जयपुर में, 2014 की बात है ये, तो 2014 में नेशनल कैंप हुआ था। तो उसमें मैं थोड़े से रैंक से रह गया था, तो 5 लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें, तो मैं 6th पोजीशन पे आया था। तो उस साल मैं नहीं खेल पाया था।

0: फिर नेक्स्ट ईयर भी 10th स्टैंडर्ड में भी मैं गया था खेलने स्टेट लेवल पे. स्टेट लेवल पे मैं 3 बार स्टेट लेवल खेला हूँ और 3 बार टीम इवेंट में हम लोग सेकंड आए हैं. 2 बार मैं जयपुर की तरफ से खेला हूँ और 1 साल मैं 8th स्टैंडर्ड में अलवर की तरफ से खेला हूँ.
1: जी हाँ, प्रखर मदान, आप काफ़ी तेज गति से इस गेम को खेलते हैं और इससे कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्टेमिना है काफ़ी इसमें चाहिए खेलने के लिए. वास्तव में अगर हम टेबल टेनिस की टेक्निक को सीखना चाहें, क्या टेक्निक का गेम है या माइंड का गेम है, किस तरह से हम इसको खेलते हैं?
0: तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं कहना चाहूँगा कि ये दोनों का ही गेम है. गति का भी गेम रहेगा इसमें और इसमें आपका टेक्निक भी बहुत रहता है और ये बहुत धीरे धीरे आपको आता है. आप सोचोगे कि आपको बहुत जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं रहता. ये बहुत ही आपको बहुत इसमें अनुभव चाहिए, बहुत टाइम की प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप इसमें वो मास्टर कर सकते हैं. ऐसे क्योंकि बहुत स्पीड से बॉल आती है और बहुत तरीके की स्पिन होती है इसमें. साइड स्पिन होती है, बैक स्पिन होती है, फॉरवर्ड स्पिन होती है. तो आपको वो चीज़ें एनालाइज करने में और देख के खेलने में काफ़ी समय लगता है, बहुत टाइम लगेगा आपको ये सब सीखने में. तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मतलब स्टैमिना के लिए भी मतलब मेरा कोच मुझे मल्टी बॉल वो प्रैक्टिस कराता था, उसमें बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए होता है. फिर आपका फुटवर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत कम समय होता है कि आप पोजीशन से इधर लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करें. तो फुटवर्क भी इसमें एक बहुत ज़्यादा इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम का है, तो उसका आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है. और बाकी मेरा कोच मुझे ये मल्टी बॉल से और उससे मेरा स्टैमिना काफ़ी इम्प्रूव हुआ था.
1: जैसा आप बता रहे हैं कि आपके कोच ने आपको सिखाने में काफ़ी मेहनत की, आपने 2 शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया है, फुटवर्क और स्पिन. ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं.
0: हाँ, वो बॉल का गेम में तो सब में ही रहता है आपका. आप टेनिस ले लो, टेनिस और टेबल टेनिस दोनों में ही आपका सारा स्पिन रहता है. बैक स्पिन, फॉरवर्ड स्पिन, साइड स्पिन, तो वो सब आपको देख के खेलना पड़ता है कि आपको कब साइड स्पिन का आपको कैसे सामने वाले को रिप्लाई करना है बैट से, तो वो सब आपको देख के ही करना पड़ता है.
1: प्रखर, कभी आपको लगा खेलते खेलते कि यार एक बहुत ही टफ गेम है और इसमें काफी स्पीड चाहिए और मुझे गेम बदलना चाहिए, कुछ और खेलूं, ऐसा विचार मन में आया कभी?
0: नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा विचार आया, लेकिन मैं जरूर, मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला है. मेरे पापा ने सिखाया वो भी मेरे को, तो मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला है और लॉन टेनिस. तो मैंने सारे तीनों रैकेट स्पोर्ट्स बहुत खेले हैं, बट प्रोफेशनली मैंने टेबल टेनिस को ही वो चुना क्योंकि मेरे को उसमें सबसे ज्यादा मजा आता था. लेकिन एज अ मैं बोलूंगा, लेकिन काफी ये टेबल टेनिस और लॉन टेनिस काफी सिमिलर गेम है क्योंकि इसमें आपका स्पिन वगैरह सब ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है. लेकिन थोड़ा, लेकिन बैडमिंटन भी खेला है तो फुटवर्क मेरा उन सबसे भी काफी इंप्रूव हुआ है क्योंकि बैडमिंटन में थोड़ा आपका बड़ा एरिया हो जाता है, तो उसके लिए आपको और फुटवर्क ज्यादा अच्छा चाहिए होता है. तो मैं कहूंगा कि मेरा बैडमिंटन और लॉन टेनिस खेलने से भी मेरे गेम में काफी इम्प्रूवमेंट आया है.
1: इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल टेनिस के प्लेयर को बैडमिंटन और टेनिस दोनों खेलना जरूरी है ताकि
0: खेलना जरूरी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो आपका फुटवर्क और ये सब जो
1: मतलब आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट आता है.
0: हाँ, गेम में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, करेक्ट.
1: ऐसा कोई मैच याद है जब आपको बिल्कुल नेक टू नेक लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा और हारते हारते जीत गए, या ऐसा कि मैं जीत रहा था और जीतते जीतते हार गया?
0: तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेरा नेशनल कैंप लगा था, 900 की बात है ये, तो उसमें मेरा वो चल रहा था, प्री क्वार्टर फाइनल चल रहा था जिसमें 16 लोग रहते हैं. तो उसमें मेरे को नेशनल कैंप क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप 8 में आना चाहिए जो कि होता है क्वार्टर फाइनल. तो उसमें मुझे अच्छे से याद है, मेरा एक दोस्त ही था. मैं तब 8 स्टैंडर्ड में अलवर से खेलता था और 9 स्टैंडर्ड में मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था जयपुर. तो मैं जयपुर के उससे खेल रहा था, तो मेरे दोस्त से ही मेरा मैच था जिसके साथ मैं अलवर में प्रैक्टिस किया करता था. तो वो 2-0 जीत रहा था और ये तीसरा बेस्ट ऑफ 5 का मैच था, वो 2-0 अप था. और थर्ड मैच भी मैं वो 10-7 पॉइंट चल रहा था. तो टेबल टेनिस का मैच होता है 11 पॉइंट्स का मैच होता है, तो 10-7 का स्कोर चल रहा था. और उसके बाद मैंने 3 पॉइंट लगातार लेके ड्यूस पे मैं मैच को लेकर आया और उसके बाद लगातार मैंने अगले 2 गेम भी जीते और उसी से ही मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ था. और उसी परफॉर्मेंस के चक्कर में मैं मतलब काफी फेमस हो गया था और जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं आपके टेबल टेनिस के, उनके भी उसमें आ गया था मैं. तो फिर उसके बाद मेरा नेशनल कैंप लगा, उसमें मैंने प्रैक्टिस करी, बट कुछ कारण के चक्कर में मेरा नेशनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैं कैंप में बाहर हो गया था. बट वो मैच एक ऐसा मैच है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिसके चक्कर में मेरा काफी इंप्रूवमेंट भी आया, मैं काफी लोगों से मिला भी सही और मतलब गेम चेंजिंग मैच था वो मेरे लिए.
1: प्रखर, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत जुनूनी खिलाड़ी किसी अच्छे खिलाड़ी को देखकर उसका मैच देख देख कर गेम सीख जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी हम मानते हैं कि अगर आपको परफेक्ट खिलाड़ी बनना है तो एक कोच होना जरूरी है जो आपको सारे कमियों को दूर कर दे और आपको एक परफेक्ट प्लेयर बनाए. तो कोच का रोल टेबल टेनिस में कितना है?
0: कोच का रोल बहुत

0: आपका तो जैसा कि मैं इधर जयपुर के SMS स्टेडियम में खेला करता था, तो हमारे उधर एक संजय सर करके होते थे, तो उन्होंने मेरा बहुत बहुत सहयोग दिया है मेरे साथ। उन्होंने मेरा सारा जो मेरा पूरा एक आपका मूवमेंट रहता है हैंड का, तो आपका मेरा स्टार्टिंग में रिस्ट बहुत मूव होता था, तो जो कि आपका नहीं होना चाहिए। तो रिस्ट का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो टेबल टेनिस में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है,
1: जी
0: तो वो मेरा उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कराया है, तो मैं उनको उसके लिए बहुत मेरा उसके बाद से ही काफ़ी इम्प्रूव हुआ है गेम, तो काफ़ी महत्व रहता है। बाकी जो आपके आपको जब आपका मैच खेलते हो आप, आपको उसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब कोच तब का भी कोच बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं आपको, तो वो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: सही अच्छा रहता है।
1: ऐसा कोई खिलाड़ी जिसको देखकर आप चाहते हैं कि मैं भी उसके जैसा खिलाड़ी बनूं, एक बड़ा खिलाड़ी, एक रोल मॉडल जो होता है ना, जो हमें काफी प्रेरित करता है कि यार अगर टेबल टेनिस में खेल रहा हूं तो मुझे इसका गेम बहुत अच्छा लगता है।
0: तो इसके लिए मैं दो लोग को वो करूंगा, एक है तिमो बोल जो कि है जर्मनी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बार वो वर्ल्ड नंबर वन, 4 से 5 बार वर्ल्ड नंबर वन का उनका वो रहा है, बाकी
1: रैंकिंग
0: रैंकिंग रही है, एंड वो अभी भी 41 ईयर्स के हैं, लेकिन वो अभी भी खेल रहे हैं और अभी भी वो टॉप 20 टॉप 10 में आते रहते हैं। तो उनको ही देख के मैंने यूट्यूब पे उनके बहुत वीडियोज देखे हैं, उनकी टेक्निक से मैंने अपने आप को बहुत घर पे प्रैक्टिस करके बहुत इंप्रूव करा है। और एक दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा मानव ठक्कर करके, वो इंडिया के ही खिलाड़ी है और वो काफी यंग लेवल के खिलाड़ी है जो कि अभी अपने इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे जयपुर में भी खेलते हुए देखा है, वो अजमेर में प्रैक्टिस करते थे PSPB अकेडमी में, तो उनको मैंने देख के मतलब काफी मैंने अपना रोल मॉडल माना है। वो काफी कम उम्र से वो खेलना चालू कर रहे थे और काफी अच्छा खेलते हैं वो, और अभी सबसे छोटे प्लेयर होंगे जो
1: जी
0: वर्ल्ड
1: हाँ
0: इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
1: प्रखर, आप अभी एक जॉब में भी आ गए हैं और आपका खेलना भी जारी है, तो आगे आपका इस खेल को लेकर टेबल टेनिस में कोई अच्छा सा ड्रीम होगा, क्या करना चाहेंगे?
0: तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 9th स्टैंडर्ड में मैं नेशनल कैंप तक ही जा पाया था और फिर मेरा नेशनल में कभी खेला भी नहीं था, 10th स्टैंडर्ड में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था, तो वो मेरा अभी अधूरा रह रखा है, तो उसको मैं अगर मेरे को टाइम मिला अभी जॉब के साथ तो मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स भी खेलते हैं तो अभी भी मैं
1: जी
0: शाम को जॉब से आने के बाद प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो मेरा अगर पूरा हो पाएगा तो नेशनल खेलने का एक, तो मैं मतलब वो मेरा है सपना एक तरीके से, एक बार नेशनल खेलना है मेरे को, तो उसके लिए मैं एक बार जरूर प्रैक्टिस करूंगा और
1: जी
0: सही
1: जी
0: पूरा करूंगा।
1: क्या कहना चाहेंगे नए दौर के खिलाड़ियों के लिए जो नए नए आ रहे हैं टेबल टेनिस में, कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा पेशेंस भी रखें?
0: करेक्ट,
1: जी क्या कहेंगे?
0: तो मैं यही बोलूंगा, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है, 2 साल मेरे को वॉल प्रैक्टिस करी है, मैंने बहुत लोगों के साथ खेला है, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो बहुत जरूरी है, मैंने कितने मैचेस खेले वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे को वो याद है कि नए नए लोगों से मिला हूँ कैसे सारे, जैसे मैंने आपको एक मैच बताया उसके बारे में याद रहता है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो जो जर्नी है आपकी वो
1: जी
0: बहुत अच्छी रहती है आपको, फिर आपको खेलना है तो आपका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको खेलना ही चाहिए आपको, और टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जो आपको स्टैमिना भी आपका इम्प्रूव करता है, आपका मूवमेंट्स भी ये आपके
1: अच्छे
0: मूवमेंट
1: रहते
0: स्ट्रांग
1: हैं
0: कराता है,
1: और
0: तो
1: आपको फिट रखने में
0: हाँ
1: मदद
0: आपको
1: करता है।
0: फिट रखने में बहुत मदद करता है वो, तो नए को मैं ये बोलूंगा नए खिलाड़ियों को कि आप खूब से खूब टाइम दें, मतलब एज आ स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए आपको
1: जी
0: उसके लिए,
1: जी
0: लेकिन आपका कोई भी स्पेयर टाइम होगा तो उसमें अगर आप टेबल टेनिस को टाइम दे सकते हैं तो उसके लिए आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए।
1: तो प्रखर मदान, आप एक अच्छे खिलाड़ी बने रहें और नित नई सफलताएं आपको मिलते रहें, ऐसी शुभकामनाएं आकाशवाणी आपको देती है।
2: अभी आप सुन रहे थे टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रखर मदान से की गई बातचीत, कार्यक्रम का समय हो चला है, अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। ये आकाशवाणी है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें।
1: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
4: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त चंचल। ये गीत है बाजीगर फिल्म से, कुमार सानू और अनु मलिक साथियों की आवाजें हैं, धुन अनु मलिक की है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के साथ। अगला गीत हमने चुना है पुकार फिल्म से। कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण की आवाजें हैं, धुन ए आर रहमान की है।

फिल्म संगीत का अगला गीत हमने चुना है हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और साथियों की आवाजें हैं। इस्माइल दरबार की धुन।

श्रोताओं, आइए एक और गीत सुनते हैं कोयला फिल्म से। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें हैं। संगीत राजेश रोशन का है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुत किया आपके रेडियो दोस्त चंचल ने। नमस्कार। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।

0: अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhav Saheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said, the induction of the 6 MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022 when 40 Shiv Sena MLAs rebelled. He said the uprising was aimed at preserving the ideology of Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and safeguarding the party's Hindutva principles. Indian Railways has approved the deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometers of East Coast Railway to enhance safety and operational efficiency. The Railway Ministry said the project covers 6 important railway sections of East Coast Railway, including Baguapal Budpank, Hardaspur to Paradeep, Khulda Road Balangir, Nopara Gunapur, Lanjigarh Road to Junagarh, and Bobli Salur.